मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि यानी 29 मई सन 2026। सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आप सुनते हैं आज का चिंतन। खुश और प्रसन्नचित रहना वास्तव में एक जीवन शैली है। इस क्षणभंगुर नश्वर संसार में जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, वहाँ भला परिस्थितियाँ कैसे ठहर सकती हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाए। जब ईश्वर आराधना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो जाती है तो हृदय स्वतः ही शांति की ओर अग्रसर रहता है और मनुष्य स्थायी आनंद अर्थात परमानंद को प्राप्त कर लेता है और यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भगवान की भक्ति से शरीर को सुख, मन को शांति और आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्ति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर, सभी संशयों को समाप्त कर, अंदर बाहर से शुद्ध और पवित्र हो जाता है।

हे प्रभु, हे नीलकंठ, आप महाकल्याणकारी और दयावान हैं। आप अपने भक्तों का दुख पल भर में ही हर लेते हैं, हर विपत्ति को दूर कर सदमार्ग दिखाते हैं। आप स्वयं भोले भंडारी हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर भी कृपा बरसाते हैं। हे शिव शंभू, आपकी जय हो।

हे करुणामयी माँ, हे जगतारिणी, आपका आशीर्वाद हम सब के लिए अति आवश्यक है। जीवन के हर पथ पर आप अपने बालकों को सही राह दिखाती हैं और जीवन पथ पर बढ़ने के लिए सदा मार्ग प्रशस्त करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे ईश्वर स्तुति का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमक्कर मुनियों के वस्त्र माला मेखला आदि और कमंडलू राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। कृषि की बातें में आज जिक्र करेंगे हरे चारा में लोबिया की काश्त कर देना के सावधानी बरतें, इस बारे में कुछ सुझाव। भाई कोई भी फसल ले हैं, सबसे पहले जरूरी बात यह आया है कि हम कोई ऐसी किस्म लें जो उन्नत किस्म हो, पैदावार भी हमने अच्छी दें दी हो और कीड़े बीमारियां तें मुक्त हो। तो लोबिया में एक किस्म है CH88। लोबिया की एक किस्म है चारे की खेती के लिए बहुत बढ़िया मानी जा है। सीधी बढ़ने वाली किस्म है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के और छोड़े हुए हैं। इसके बीज का रंग हल्का गुलाबी, भूरा या फिर हल्का भूरा हो है। यह किस्म में बहुत से रोग आते हैं मुक्त है। विशेषकर बात करें हम पीड़े मोजिक की, विषाणु रोग की, इन तया मुक्त है। इस किस्म की बिजाई सिंचित और कम सिंचाई वाले दोनों इलाकों में करी जा सके है। इसके हरे चारा जो हमने मिल जाए है वो बुआई थे 55-60 दिन के बाद हमने हरा चारा इसका मिलना शुरू हो गया है। और हरे चारे की पैदावार की बात करें तो लगभग 130-135 क्विंटल एक किले में इसका चारा हमने मिल गया है। किस्म है CS88। मैं अपने खेत ने 2-3 बार जुताई करके सुहागा पाटा लगा के बिल्कुल एक सार कर लें, यानी कि खेत तैयारी के बाद। और फिर बिजाई के समय की बात करें तो देखो लोबिया की बिजाई का जो समय है वो तो मध्य मार्च से शुरू हो चुका है और जुलाई के आखिर तक चल रहा है। अगर हमारे द्वारा पानीपात के साधन ठीक हैं, सिंचित इलाके हैं अपने द्वारा, तो हम इसकी बिजाई मध्य मार्च से लेकर जुलाई के आखिरी सप्ताह के बीच में कद्दे भी हम इसकी कर सके हैं, यानी कि ईब जो समय चल रहा है इसमें भी हम इसकी बिजाई कर सके हैं ताकि हरे चारे में कोई कमी ना आवे। बीज की मात्रा की बात करें तो भाई अगर हम निरे लोबिये की काश्त कर रहे हैं तो 16-20 किलोग्राम बीज एक एकड़ में हमने चाहिएगा। और अगर कोई मिलमा खेती कर रहे हैं, कोई दूसरी कोई खेती कर रहे हैं इसके साथ में मिला के, तो फिर जो लोबिये का बीज है वो उसकी एक तिहाई मात्रा हमने लेनी है। बाकी इसकी बिजाई जो है वह खुड्डा में करनी है। खुड़ तक खुड़ का फासला हमने 30 सेंटीमीटर रख कर चलना है और भाई ड्रिल द्वारा हमने इसकी बिजाई करनी है। बिजाई के टाइम पे हमने जो ध्यान रखना है कि हमारे खेत में ठीक ठाक नमी हो, नमी में कोई कमी ना हो ताकि अंकुरण उसका जल्दी होए। अपने खेत के हिसाब का भी हमने पता हो है तो सही खेत में जब नमी है उस टाइम पर हमने लोबिया की काश्त करनी है, यानी कि बिजाई करनी है। लेकिन बिजाई करने से पहले लोबिया का जो बीज है उसका राइजोबियम कल्चर का जो टीका है उससे उपचार करके और फिर फ्री आल्हा बीज हो जाए उस टाइम पर हमने इसकी बिजाई करनी है। ऊँत दलहनी फसल है या इसमें को खास से खादा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हम बिना मिट्टी का परीक्षण कराएं और सामान्य खेत में अगर इसकी बिजाई कर रहे हैं तो फिर हमने इसकी शुरू शुरू में बढ़िया बढ़वार हमने मिल जाए, हरा चारा हमने थोड़ा जल्दी मिल जाए। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए हमने 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने देना है। और बिजाई तो पहले जो सिंचित इलाके हैं उसमें हमने 125 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, बरानी इलाके में हमने 75 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट पोरा या ड्रिल विधि से हमने अपने खेत में ड्रिल कर देनी है। मिश्रित खेती में उर्वरक जो है जो दूसरी फसल है उनकी सिफारिश के अनुसार हमने अपने खेत में देने हैं। बाकी इसमें ध्यान रखना है निराई गुड़ाई का। भाई गर्मी में जो बोई गई फसल है तो एक निराई गुड़ाई पहली सिंचाई देने के बाद में और एक फिर बत्तर आने के बाद में, क्योंकि जो खाद की मात्रा हमने दी है वह हमारी फसल के इलाके ना कि खरपतवारों के, तो निराई गुड़ाई इसमें बहुत ज़रूरी है। और निराई गुड़ाई लोबिया लोबिया की फसल में नहीं, कोई सी भी फसल हो चाहे उसमें निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाए ताकि जो हम खाद की मात्रा दें हैं और जो हमारी फसल है वह सही तरीके से होए, इसलिए निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। रही बात इसमें सिंचाई की, तो भाई सिंचाई क्योंकि मई का महीना चल रहा है और आगा का तापमान और भी बढ़ रहा है तो इसमें हमने 15-20 दिन के अंतराल पर हमने सिंचाई करनी है। और बाकी अपने खेत का हिसाब देख लें कि खेत में कितने दिन नमी रह जाए है उस हिसाब में देखें हमने इसमें अपने जो है सिंचाई का प्रबंध करना है। बाकी बिजाई के 55-60 दिन के बाद यानी कि 2-1 महीने के बाद हमने हरा चारा देना शुरू कर दिया। तो ये कुछ मोटी मोटी बात है। अगर किसान भाई इस टाइम पे लोबिया की काश्त करेंगे, सिफारिशशुदा मात्रा खाद की देंगे और जो बिजाई का तरीका है उसी तरीके ने अपनाओगे तो इस लोबिया की फसल से भरपूर फायदा ले पाओगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर हिंदी समाचार, उसके बाद अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 40,30,000,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणां उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनी ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमा रक्षक दलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमा रक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयंत्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् संबोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 33,100 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायां अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपांति चक्रीये द्वंद्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Keralam

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:00। दैनिक आयोजन युवा संसार का समय रहेगा 5:30 पर। आज के विषय रहेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा दल दिवस, चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि, बालिका शिक्षा का महत्व और साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत युवा पसंद। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर हम आपके लिए पेश करेंगे 1:10 पर।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा शाम 7:30 पर। रात्रि 8:25 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुगम संगीत। रात्रि 9:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम एक फिल्म सीखा।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। विषय रहेगा मिट्टी पानी की जांच। कार्यक्रम में कृषि जगत का समय रहेगा 6:20 पर। आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा पशुपालन संबंधित समस्या व सुझाव। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर कपिल देव। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: आकाशवाणी रोहतक से प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

मैंने भोग भोगना तो आरंभ किया पर वह टिक न सका। घर का ठाट बाट जमाने में मुझे उस पर मोह नहीं उपजा, अतः घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च घटाना शुरू कर दिया। मैं जिससे कपड़े धुलवाता था, एक तो उससे खर्च बढ़ता था, दूसरा वो कभी वक्त पर कपड़े नहीं देता था। इससे 2-3 दर्जन कमीजों और इतने ही कॉलरों में से मेरा काम नहीं चलता। कॉलर रोज बदलता, कमीज रोज नहीं तो एक दिन बीच में देकर बदलता था। इससे दोहरा खर्च पड़ता था। ये सब मुझे बेकार लगा, अतः धुलाई का सामान जुटाया। धुलाई कला पर पुस्तक पढ़कर धोना सीखा, पत्नी को भी सिखाया। काम का बोझ कुछ बढ़ा तो ज़रूर, पर नई चीज़ थी, इसे करने में मज़ा आया। मेरा पहला अपने हाथों से धोया हुआ कॉलर मुझे कभी नहीं भूलेगा। उसमें माड़ी अधिक लग गई थी, स्त्री काफ़ी गर्म नहीं थी, कॉलर जल जाने के डर से स्त्री को भली भांति दबाया नहीं। वही कॉलर लगाकर मैं कचहरी गया और वहाँ बैरिस्टर के विनोद का साधन बन गया। पर ऐसा मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में यथेष्ट थी। एक मित्र ने पूछा, क्या कपड़े धोने वालों का अकाल है? मुझे कपड़े धोने वाले का खर्च असह्य लगता है। जितनी कॉलर की कीमत उतनी धुलाई दो, ऊपर से कपड़े धोने वाले की गुलामी करो। इससे तो मैं अपने हाथ से धो लेना अच्छा समझता हूँ। स्वावलंबन की एक खूबी मैं मित्रों को समझा न पाया। मैं कह सकता हूँ कि अंत में कपड़े धोने के धंधे में अपने काम भर की कुशलता मैंने प्राप्त कर ली। घर की धुलाई बाहर की धुलाई से किसी तरह घटिया नहीं थी। कॉलर की सख्ती और चमक भी बाहर के धोए हुए कॉलर से 19 नहीं थी। गोखले के पास स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे के प्रसाद स्वरूप एक चादर थी। इस चादर को वह बड़े जतन से रखते थे। जोहन्सबर्ग में उनके सम्मान में जो भोज दिया गया था वह सम्मेलन का महत्वपूर्ण अवसर था। दक्षिण अफ्रीका में यह उनका बड़े से बड़ा भाषण था, अतः उस अवसर पर उन्हें उस चादर का उपयोग करना था। उसमें शिकन पड़ी हुई थी और उस पर स्त्री करने की आवश्यकता थी। बाहर से धुलवाना, तुरंत स्त्री करा देना संभव न था। मैंने अपनी कला का उपयोग करने की इजाज़त मांगी। आपकी वकालत का तो मैं विश्वास कर लूँगा, पर इस चादर को धोने की आपको इजाज़त नहीं दे सकता। इस चादर पर आपने दाग लगा दिया तो इसकी कीमत आप जानते हैं? ये कहकर बड़े उल्लास से प्रसाद की कथा मुझे कह सुनाई। फिर मैंने प्रार्थना की और दाग न लगने की जिम्मेदारी ली। मुझे स्त्री करने की अनुमति मिली, मुझे अपनी कुशलता का सर्टिफिकेट मिल गया। अब दुनिया मुझे सर्टिफिकेट न दे तो उससे क्या होता है? मैंने तो कम से कम कपड़े धोना सीख लिया था। हजामत तो विलायत जाने वाले सभी हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर बाल छटाई कोई सीखता हो इसका ख्याल मुझे नहीं। प्रिटोरिया में मैं एक बार एक अंग्रेज़ हजाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए जो अपमान किया वह घाते में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा, बाल काटने की कैंची खरीद ली। घर आकर शीशे के सामने खड़े होकर बाल कतर डाले। जैसे तैसे बाल कट तो गए, पर पीछे के बाल कटने में बड़ी कठिनाई हुई, सीधे नहीं कटे। कचहरी में खूब कहकहा लगा, तुम्हारे सिर पर चूहा तो नहीं चढ़ गया था? मैंने कहा, नहीं जनाब, मेरे काले सिर को सफ़ेद हजाम कैसे छुए, इसलिए जैसे तैसे अपने हाथ से काटे बाल मुझे अधिक प्यारे हैं। इस उत्तर से मित्रों को अचरज नहीं हुआ। सच पूछिए तो सज्जाम का कोई दोष नहीं था। वह काले चमड़ी वालों के बाल काटने लगे तो उसकी रोजी मारी जाए। स्वावलंबन और सादगी के शौक ने आगे चलकर तीव्र रूप प्राप्त किया। उसकी जड़ तो मेरे अंदर आरंभ से ही थी, उसे फलने और फूलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यकता थी, वह मिल गई। अभी आपने सादगी विषय पर गांधी जी के विचार सुने और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन।

0: इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा का यह अंक यहीं पर संपन्न हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिएगा अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज है 29 मई। हर साल 29 मई को दुनिया भर के ट्रैकर्स, पर्वतारोही और साहसी लोग अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है। ये वार्षिक उत्सव साहसिक भावना, मानवीय सहन शक्ति और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने की अदम्य इच्छा शक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथियों, सर एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद वैश्विक प्रतीक बन गए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, पर पहली बार शिखर पर पहुंचने का प्रमाण दिया। इस विजय का विश्व भर में जश्न मनाया गया, जो मानवीय सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प की जीत का प्रतीक थी। पर्वतारोहण में अपनी उपलब्धियों के अलावा हिलेरी ने नेपाल के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शेरपाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1960 में हिमालयन ट्रस्ट की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों के निर्माण का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से शेरपाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे उन्हें नेपाल में अपार सम्मान और कृतज्ञता प्राप्त हुई, जो पूरे विश्व में फैल गई।

साथियों, तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर सर एडमंड हिलेरी के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया था। नोर्गे की इस उपलब्धि ने उच्च पर्वतीय पर्वतारोहण में शेरपा पर्वतारोहियों की महत्वपूर्ण भूमिका और विशेषज्ञता को उजागर किया। अपनी ऐतिहासिक पर्वतारोहण उपलब्धि के अलावा तेनजिंग नोर्गे ने पर्वतारोहण और शेरपा समुदाय में अमिट योगदान दिया। उन्होंने शेरपा गाइड्स के कल्याण और मान्यता को बढ़ावा देने, उनके साथ उचित व्यवहार करने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1954 में नोर्गे ने भारत के दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की। ये संस्थान पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र बन गया, जिससे पर्वतारोहियों की एक नई पीढ़ी को तैयार किया गया और क्षेत्र की पर्वतारोहण विशेषज्ञता को बढ़ावा गया। बाद में 1978 में तेनजिंग ने एक ट्रैकिंग एडवेंचर कंपनी की भी स्थापना की। नोर्गे की विरासत को न केवल एवरेस्ट शिखर पर उनकी अभूतपूर्व चढ़ाई के लिए परिभाषित किया जाता है, बल्कि शेरपा लोगों और व्यापक पर्वतारोहण समुदाय की स्थिति और कल्याण को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण से भी परिभाषित किया जाता है।

साथियों, आज किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि भी है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 उत्तर प्रदेश के मेरठ, अब हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। उनका एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी और 1928 में गाज़ियाबाद से वकालत की शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया और जेल भी गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसानों और ग्रामीण समाज की समस्याओं को चौधरी चरण सिंह ने बहुत ही नज़दीक से समझा। चौधरी चरण सिंह 1937 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और वो कई बार मंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 1967 से 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भूमि सुधारों के प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य किया। जोत अधिनियम 1960 जैसे कानूनों के जरिए किसानों को जमीन पर अधिकार दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारा, वे सदा विजय रहे। उनका प्रधानमंत्री कार्यालय बेशक छोटा था, लेकिन किसान हितों को केंद्र में रखने की उनकी सोच प्रभावशाली रही। महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज 29 मई को उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें किसान और देश सदा याद करता रहेगा।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। ये वो तारीख है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी UNTSO नामक पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने फिलिस्तीन में अपना अभियान शुरू किया था। इस दिन हम संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत सभी पुरुषों और महिलाओं के समर्पण और साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की स्मृति को सम्मान देते हैं। सन 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन की स्थापना के बाद से हिंसा, दुर्घटनाओं और बीमारियों के परिणाम स्वरूप शांति की सेवा में 4000 से अधिक पुलिस और नागरिक कर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय सदस्य देशों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शहीद शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गंभीर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विविध है और वे सदस्य देशों की बढ़ती संख्या से हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सेवा करते समय विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बहाल करने की प्रतिबद्धता से एकजुट होते हैं। वे सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने और संघर्ष से शक्ति की और संक्रमण कर रहे देशों को सहायता प्रदान करने के साझा उद्देश्य को पूरा करते हैं। साथियों, शांति रक्षकों में नागरिक भी होते हैं, सैन्य और पुलिसकर्मी सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। शांति रक्षा कार्यों के जटिल और बहुआयामी होने के साथ साथ शांति रक्षकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी विकसित हो रही हैं। शांति रक्षा अभियान केवल युद्ध विराम की निगरानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इसमें नागरिकों की सुरक्षा, पूर्व लड़ाकों को निरस्त्र करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, कानून के शासन को बढ़ावा देना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करना, बारूदी सुरंगों के खतरे को कम करना और भी बहुत से काम शामिल हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत

0: मदद की है।
1: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
5: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं भीम सिंह डिगलिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे आज के कलाकार थे भीम सिंह डिघलिया। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक रंग।

धीरे धीरे निरंतर हम सभी का भी प्रयास होना चाहिए कि जिंदगी खुशहाल हो, शांत हो, सार्थक हो। और ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फूल और कांटे से, आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, और गीत के बोल लिखे थे समीर ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

गीत की धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने, आवाज़ें थी शान और अलका याग्निक की, और फिल्म थी इश्क है तुमसे।

0: समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम था आशिकी और आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमको का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़

बांटने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

साथियों, हर गीत एक संदेश भी देता है। जैसे ये गीत समझाता है कि व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसका हर जगह स्वागत हो। साथियों, ये नगमा आपने सुना फिल्म विजयपथ से। आवाज़ें थी साधना सरगम और सखियों की,

फिल्म बाजीगर का ये नगमा आपने सुना विनोद राठौर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने।

ये गीत आपने सुना फिल्म मैं हूं ना से, आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और अभिजीत की, गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने।

0: ये नगमा आपने सुना शान की आवाज़ में और फिल्म का नाम था प्यार में कभी कभी। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

इसी के साथ कार्यक्रम एक रंगहीन संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।

0: मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
2: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Keval Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से

0: नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है, मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं

0: को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना।

0: भीषण युद्ध के बाद ये अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।

0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
0: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने

राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 11 मई से 11 जून राज्य व्यक्ति मुफ्त पशु टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के महानिदेशक डॉ. प्रेम सिंह ने स्वयं विभिन्न जिलों में चल रहे टीकाकरण का जाकर निरीक्षण किया। डॉ. प्रेम सिंह ने बताया कि विभाग की टीमें घर घर जाकर गायों और भैंसों को मुंहखुर और गलघोटू जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए एक ही संयुक्त टीका लगा रही है, जिससे कि पशुओं को संक्रामक वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाया जा सके, ताकि दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो और पशु की जान बचाई जा सके। अब तक विभाग द्वारा कुल 55 लाख पशुओं में से 18 लाख पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशुपालकों को ये सुविधा निशुल्क दी जा रही है। विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए चलाई जा रही मोबाइल वैन के बारे में डॉ. प्रेम सिंह ने कहा,
2: केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत 1,00,000 एनिमल के ऊपर एक वैन का प्रोविजन किया गया है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र सिंह सैनी जी ने निर्देश दिए हैं कि इसका समय बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है इसका 12 से लेकर रात 8 बजे तक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको 6 से लेकर रात 10 बजे तक का किया जाए, जो कि अभी रिकॉर्ड दिन है। इसका खास फायदा क्या है कि इसमें जो हमारा एक टोल फ्री नंबर रहता है 1962, इस पे कोई भी फॉरवर्ड कॉल करेगा तो उस कॉल से उसको रिवर्ट बैक उसको वापिस फोन आ जाएगा कि उसके घर डॉक्टर
0: कितनी देर तक पहुंचा। कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबूलाल ने बताया कि किसान योजना का लाभ लेने के लिए 15 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत 25 जून को उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा।
3: DRM स्लोप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत हमारे पास टारगेट आ रहे हैं। इसमें 12 मशीनें हैं जो हमारे आने वाले टाइम में CRM जो स्ट्रा स्टेबल बर्निंग उसको मैनेजमेंट करने के लिए काम आएंगी, और 15 तारीख तक किसान भाई अपने रजिस्ट्रेशन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सुपर सीडर है और बेलर मशीन भी है, हे रैक है और सुपर सीडर भी है और रोटरी स्लेसर है। इसमें किसान अपनी इंडिविजुअल मशीन भी ले सकते हैं। इसमें 50% अनुदान है और डायरेक्ट ये किसान के बैंक खाते में आएगा।
0: योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए किसान कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी, बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज इक्का दुक्का जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान भी जताया गया है। पंचकुला के रामगढ़ स्थित TBRL रेंज ने 31 मई को होने वाले हाई कैलिबर बस परीक्षण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्राप्त पत्र के अनुसार ये परीक्षण 31 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वायुसेना के उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा। इस हाई कैलिबर बम के ट्रायल से उड़ने वाले कण आसमान में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई और जमीन पर 2 किलोमीटर के रेडियस तक के गांव भानु और गांव बिल्ला स्प्लिंटर प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को इन गांवों में लोगों को इस समयावधि के दौरान घर के अंदर रहने के दिशा निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
4: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनु

आंसू बन गए फूल, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। गोविंद मुनिस की रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अनुरोध आप सभी का था, आप हैं पैंतावास से धर्मचंद डबास, धर्मवीर चुचरू, लीला परविंदर, रणबीर बिल्लू, रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र, मानसी, ज्योति बत्रा, वंशिका, हिमांशु बत्रा। खंडवा से शिवांश खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू, जयश्री। जगराव से सुनील पाठक, कमल सुच्चा पाठक, दीपिका, आशीष, गव्या मल्होत्रा। रहमानिया मोहल्ला सीतामढ़ी से तलत जहानाज, फरत जहानाज, नुजत नाज, वसीम अकरम, नदीम शमीम, अमन रिफत, रूहीनाज। ढाणा नरसान से जगदीश चंडालिया, राजवीर, सतीश, केला देवी। सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान। मलोट से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए है, आप हैं खेराबाड़ी हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा, आरबी तन्नवी। वाकोडी कल मनूरी से उत्तम जमधाड़े, स्वरा, आत्माराम जमधाड़े, ललिता आसोले और इनके परिवार के अन्य सदस्य। विडूल तालुका उमरखेड़ से, जिला यवतमाल से ये पत्र है, महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका लक्ष्मी, भारत धुले, स्वरीत पोपलवाड़। वाकोडी से उत्तम जमधाड़े, मोहाली से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, डब्वाली से जेके बकोलिया, सुनीता संजय, अनिल मीनू, लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी, प्रकाशवीर राजपूत, बालोद से कमलेश जयपुरिया, भिलाई से अनुश्री, प्रदीप, पिंकी, प्रमिला, रायगढ़ से लालचंद मिश्र, नरेंद्र कुमार राम, बालोद से नया पारा भिराई से, छत्तीसगढ़ से खत है, बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईश्वरराज, प्राची, साधना ठाकुर का, रामर से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, विनोद लखनपाल, चकला बाजार सामाना पटियाला से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता हंसमुख जिंदल, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत नेशू, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। आप सभी के अनुरोध पर फरिश्ता या कातिल इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें आप सुनेंगे। बोल अनजान के हैं, संगीत है कल्याण जी, आनंद जी का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये आपने सुना उलझन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर ने गाया, एम जी हशमत ने लिखा और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी की थी। आप हैं जलगांव सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक गणेश कार्तिक अश्वनी, औरंगाबाद से वैष्णवी जगताले हर्षुल सावंगी, भावसिंहपुरा से वैभव गौरव लोखंडे, वाकुलनी तालुका बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिथोरा देवी रुद्र कोलकर, लोहगढ़ ठाकरांवाला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंह राजदीप गुरलाल अविराज गुरमान गुरनूर, बठेना से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमशक्ल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे, आर टी बर्मन का संगीत है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। पसंद आप सभी की है। आप हैं चटोदा से सुजान सिंह वर्मा, सहोदर आयुषी कृत वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल निम्मी शिवम सतीश मुकेश साहू, गोविंदगढ़ माझीवाला से राजू टुटेजा, उर्मिला गुड्डू जीनू मन्नू आदित्य भूमि राखी अमृत बड़वाल शिव सेठी स्माइल टुटेजा बीआर, भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा। सादुल शहर से ओम प्रकाश मन्नू प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश, मधुबनी बिहार से राजू गुप्ता विनीता रविराज गौरव कुशेश्वर कांति गुप्ता रुद्र प्रताप गुप्ता, दरभंगा बिहार से पन्नालाल शारदा कुसुम रूपा गुप्ता, चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया नमन मुस्कान कुणाल, जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर भाटिया एंजल नवनीत पप्पू माफ कीजिएगा पप्पी भाटिया, बराड़ा अम्बाला से रवि राहुल रणजीत कौर प्रियंका आका जयप्रकाश नूर नमन सिमरत गुर किरत और गुर शपथ। आप सभी के अनुरोध पर हमशक्ल फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

हम शक्ल फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इसे गाया, आनंद बख्शी ने रचा, संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं अपने इन सुनने वालों की पसंद का। आप हैं प्रमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया, शोभा राहुल, ज्योति अतुल पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सुरजीत सिंह, प्रमोद डूडी, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष शोकी, बब्बू डब्बू, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्नवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरभ शर्मा, शाइना निवान शर्मा, बुच्चू कैंथिया से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, सिमरन, एकम, दमन, अभिजीत, बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अक्रम अल्ताफ अंसारी, डुमराव से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून, एस टी अंसारी, मेहताब आफ्ताब मेराज, लुदेसर से पप्पूराम गाट, संतोष लक्ष्मी, साक्षी रुचिका, जतिन गाट, रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर, जैतक वेग, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी नीशु देबू परी, पीहू पाखी कौशिक, मटोर कैथल से रामदिया, नीलम अजय, विजय और तमन्ना। आप सभी के लिए कोरा कागज फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ सुनवा रहे हैं। लिखा है एम जी हशमत ने, संगीत पद किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ये था कोरा कागज़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर ने गाया। अगला गीत आप सभी के लिए सुनवा रहे हैं, आप हैं बेमेतारा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या सुषमा सारथी, महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, इशरत वसीम, रूबीना आरिज, ममता शर्मा, पूनम शर्मा साजिया, शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, छत्रपति संभाजी नगर से, संभाजी नगर से राजेश साबले, पाटिल राजदीप, राशि शीतल, मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश प्रवीण, ममता कमल, गर्विश तमन्ना बंसल, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान, जलगांव जामोद बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला साधना सुमेत, डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी, खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ गौरव मीठी और कुहू, कबूलपुर से रण सिंह दिलोड, सतपाल मंजू, पूजा रोशनी, ओम मोर, अंकित बोस, नौरंगी अटकान, बेरडी से हुकुम करमरकर, हार्दिक प्राची, तन्नु करमरकर, बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू प्राची वर्मा, मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता शिल्पा, आकाश बक्सर से श्रद्धा नंदारे, अभ्यनंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी के लिए आपके अनुरोध पर हिम्मत फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ये था हिम्मत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का रचा हुआ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आपने सुनी। अगला गीत कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वद सानवी देशमुख। खंडवा के हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप। सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी, प्रणव सांवले। दत्रेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नौखेलाल वर्मा। मोहला के राजकुमार ढोचक, गीता अमन सानिया, सुभाष उषा, राहुल रोहित, जोगेंद्र, दर्शना इंदु यक्षित। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति गुप्ता, राधे दीपक, अंकुर राघव गुप्ता। कर्णपुरा नई दिल्ली से कविता, गौरव मानसी, अनिल मदान। फुल चिंचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी। हर गोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता रोहित, रितेश, प्रीतिशा संधु और मैक्स संधु। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। शेरड़ा हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला लीलाधर शर्मा। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वनी चौहान, माई इंदुरकर, शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान। कैथल से मधु नायक, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा और पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, इन सब की पसंद का ये गीत है। फिल्म का नाम बॉबी, शैलेंद्र और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आप सभी के अनुरोध पर आप हैं धामणी मानोरा वाशिम से तुलसीराम डेरे माया संदेश आदेश किरण प्रज्वल अनुत डेरे ज्योति तेजस प्रणीता मंगेश पाटिल और इनके बहुत सारे साथी रहमानिया मानोरा से संजीदा बानो साइमा खान बुशरा जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर सिरसला चूरू से संदीप सोनकरा प्राची सोमल कार्तिक सोनकरा और पदमपुर श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। आप सभी के अनुरोध पर राजपूत फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दो बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, इसके बाद हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: take any executive decisions during this period. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed the need to adopt bhakti and meditation to attain inner and global peace. Addressing the 45th anniversary celebrations of the Art of Living Foundation International Center in Bengaluru today, he said bhakti signifies dedication towards oneself, family, society, the nation, and humanity as a whole. He said bhakti inspires people to live in harmony with others and with themselves. Quoting the teachings of Sri Sri Ravi Shankar, he said, "The art of living lies in embracing change and enjoying every moment of life." He added that Dhyan, Gyan and Gaan enrich both life and personality. Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has congratulated the government of Odisha, Intel and 3DGS on signing a Memorandum of Understanding to bring substrate manufacturing technology to India. Mr. Vaishnav said this will further advance the semiconductor ecosystem in India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary today. In a social media post, the Vice President said the former Prime Minister was a visionary leader and a tireless advocate for farmers who dedicated his life to the welfare of the agrarian community and the upliftment of rural India. The Lok Sabha Speaker underlined that the entire life of the former Prime Minister was dedicated to the upliftment of the country's farmers, labourers and villages. Mr. Shah noted that Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh played a pivotal role in strengthening democratic values from the freedom struggle to the emergency period. At least six workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur district of Uttar Pradesh. The bridge, which stretches from Morkandar to Kandor village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. NDRF and SDRF started rescue work and operations are still underway. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mahapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mahapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 metres, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 metre at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
5: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
6: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
2: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
1: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
2: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: दी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाई देखे हैं कि अपना आज शुक्रवार का दिन है, और सबसे पहला तो यो है कि भाई आज शुक्रवार का दिन है, कार्यक्रम अपना फ़ोन इन भी रहा है। तो 3-4:15 बजे थी भाई फ़ोन करें, डॉक्टर कपिल देव जी अपने चौपाल में आऊँगे, और जो भी समस्या है पशुधन संबंधित वो भाई अपना सुझाव ले हुए कापी पेन अब भाई अपने दौरे रखें, जो डॉक्टर साहब बताऊँ हूँ भाई कोई दवाई है कोई इलाज है उसके बारे में पूरी जांच परख के साथ अपने लिख लें, और उस हिसाब से अपना जो भी कुछ करना है या फिर कोई दवाई लेनी है तो जो भी सुझाव लेने हैं डॉक्टर साहब कपिल देव जी अपना आओगे। और अपनी जो फ़ोन नंबर होंगे 01262 जो है STD कोड रहेगा अपना आकाशवाणी का, और 255-446 ये फ़ोन लाइन रहेंगी, तो इन नंबर पर भाई संपर्क करें। और ये बात करें हैं खेती बाड़ी में, तो भाई फिलहाल अपना जो टाइम चल रहा है क्योंकि जेठ का महीना है, गर्मी का टाइम है, और ये एक दो दिन तक तो भाई थोड़ी रात भी है, और दो तीन दिन का अपना मौसम का भी मिजाज थोड़ा बदला हुआ है क्योंकि आंधी गरज चमक के साथ भाई किते किते बूंदाबांदी का मौसम बन गया है, तो मौसम में थोड़ा तापमान नीचे आया है, गर्मी में थोड़ी ही निजात है, लेकिन सही गर्मी पड़े है जब अपना भाई 48-47 डिग्री तापमान पहुँच जाए है और ज़मीन जो है काफ़ी गर्म हुआ है। तो इसमें चाहे बात भाई मिट्टी पानी की जांच किया हो है या फिर गहरी जुताई किया हो है या फिर कोई हरी खाद किया हो, तो इन दिनों में तो भाई यही काम चल रहे हैं अपनी। बरानी इलाके की अगर बात करी जाए तो भाई कितने भाई कपास की बिजाई है, कितने बाजरे की बिजाई है, ये करके चल रहे हैं। जड़ती बिजाई की बात आओ है भाई, ये देखे हैं कि जो भी अपना चाहे वो बाजरे की करनी है या फिर कितने मिट्टी पानी की जाँच खाली खेत पड़े हैं भाई उड़ा हमने यो भी करवाना बहुत ज़रूरी है, अगर टेम आओगा तो इसकी बात भी कराएंगे। लेकिन अपना जो फिलहाल थोड़ा अबरानी इलाके का जिक्र चल रहा है भाई, जड़े पर्याप्त पानी है भाई, यहाँ पर कितने फुहारा का पानी है या फिर कितने नहरी पानी है, जड़े इन देखें कि भाई धान वाला इलाका नहीं है अपना, उड़े बरानी इलाके में भाई थोड़ा हनु मान लें कि पानी पा ठीक है। तो बाजरे की अगर बात करी जाए तो भाई इन दिनों में बाजरे की बहुत उन्नत किस्में आ रही हैं अपनी, वह लेवें और बिजाई करें। इसमें उन्नत किस्मा की अगर बात करी जाए तो भाई HHB 50 है, 60 है, 67 है, ये संशोधित किस्म है अपनी बाजरे की। इसके अलावा HHB 94 है, 117 है, और HHB 146 है, 197 है, 216, 223, 226, 234, 272, 299, 311, ये अपनी बहुत ही बढ़िया किस्म है। और मिश्रित HC 10 और 20 के जो बीज हैं अपने संसाधना हिसाब से प्रबंध हम कर जरूर कर लेवें, और जड़े भी बीज लेना है भाई अपने भरोसे की जगह पर ताम लेवें, क्योंकि आज जो प्राइवेट हैं उन पर धोखाधड़ी बहुत चल रही है, थैली अंदर चपका चौंध पाओगी, पैकिंग इसी पाओ हो चाहे वो दवाइयाँ की हम लें दे ना, तो इसी पैकिंग भाई आजकल मिठाइयाँ की पांदी जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ उनकी पाओ इसी, तो भाई सावधानी पूर्वक अपना भाई ये करें क्योंकि टेम जो है यो भाई महंगाई का टेम चल रहा है काफ़ी, वह बात पुरानी नहीं रही है कि आज खेती बाड़ी में बहुत खर्ची हैं, चाहे वो भाई कितने बांध का हो, डीजल का हो, पानी देने का हो, ट्रैक्टर का खर्चा हो, आधुनिक यंत्र बहुत से आ रहे हैं, तो थोड़ा हाँ हम भाई सोच समझ की सूझबूझ के साथ लेखे जोखे के साथ खेती बाड़ी करा हाँ, कोई साथ में सहायक धंधा अपना वहाँ, जब खेती बाड़ी में आजकल न्यू देखा है कि बचत हो पाओगी। लेकिन मंगवाड़ा का टाइम में ये देखा जा है कि भाई जब भी हमें एक दूसरे ने देख के भाई कितने ठेका बटाई का खेत है भाई फलाना ने इतने ला दिए, उसने इतने ला दिए, और आज सूझबूझ के साथ खेती नहीं करी, वो दे मारा हमने पेस्टिसाइड हैं खाद हैं, अड़ोसी पड़ोसी ने देख के हम गेरी जावांगे तो उन्हें समझी के जो खर्चे हैं वो हमारे इतनी बचत नहीं आने देंगे। तो आज का जो टाइम है भाई सघन खेती का है, और इसके साथ साथ सघन खेती के साथ साथ ये देखे हैं कि जो टाइम है वो काफ़ी आधुनिक भी चल रहा है भाई, अपने चाहे वो हम बात मीडिया माध्यम की करें हैं, अपने पास फ़ोन भी हैं, अखबार भी हैं, कृषि पत्रिकाएँ भी आओ हैं, तो थोड़ा ऐसा ध्यान रखें कि भाई कार रोज़गार कोई साथ में अपनाऊँ जरूर, कि इसके साथ अकेली खेती के ऊपर निर्भर रहना भी आज के दिन थोड़ी बहुत ये मानना है कि मूर्खता है, क्योंकि प्राकृतिक के आजकल वह बात नहीं रही है, प्रकृति का संतुलन इतना बिगड़ रहा है कि भाई कि तेज हवा अंधड़ या फिर कोई प्राकृतिक आपदा भाई ओलावृष्टि भी, तो अपनी खेती का पंजीकरण है वो साल दर साल ज़रूर रखें, हम कि छोटा मोटा बीमा जो है अपना वो ज़रूर रखें, तो सूझबूझ के साथ खेती करना। इसने कहूँ हैं कि भाई चाहे वो खेती बाड़ी में हम लेखा जोखा की बात कर लें, तो लेखा जोखा भी बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे कितना इसमें खर्चा आया है, कितनी बचत आई है, और फिर इसके हिसाब से हमने जो आने वाला आग का टाइम है उसकी योजना भी लेखा जोखा के साथ बनाई जा सके, भाई हमने फसल बाड़ी जो बदली करना है या फिर साल दर साल अपना गेहूँ है धान है वो चक्कर में हमने नहीं रहा, अपनी ज़मीन देखें, ज़मीन की तासीर देखें, भाई पानी देखें हमारे पास कैसा है, उसके हिसाब से आजकल बहुत सी ऐसी खेती हो रही है कि तो ड्रैगन फ्रूट है भाई, कि तो एलोवेरा है, कि तो और बहुत से देश में नई खेती है भाई, तो इनकी आधुनिक जानकारी हमने होनी बहुत ज़रूरी है, ले हुए कोई भाई पहले तो कर रहा है उसकी सहायता हम ले सके हैं, कोई काम धंधा कार रोज़गार भाई कर रहा है उसके पास उठे बैठे उसके पास जाके उसकी जानकारी ले सके हैं, तो यो टेम है इस हिसाब से इन्हें देखा हाँ कि चाहे वो खर्चे पानी का बचाने का वो है, चाहे फिर कोई हमने ढंगसर सूझबूझ के साथ कोई चाहे वो फसल हमारी कुछ ऐसे लक्षण दिखा रही है तो लक्षणा का हमने पहचान करनी है, उस हिसाब से हमने उसमें चाहे वो हम देसी दवाइयाँ का मान लें, हाँ चाहे वो नीम बसडीन की है, नीम है, अचूक है, या फिर कोई गौमूत्र का अपना अरक बहुत से भाई बनाए हैं, तो इस हिसाब से हमने जो खेती बाड़ी में कार्यरत जो अपनानी है, और गर्मी का टाइम चल रहा है भाई जड़े भी चाहे वो ईख में कसोलिया की बात आओ कि तो बाड़ी में कसोलिया की बात आओ तो भाई निराई गुडाई का टाइम तो देखो चालदार हुआ है, गर्मी तो हम जरूर बचें पर बंदिशा करके चल रहे हैं कि भाई सुबह है शाम है फिर अपना उस हिसाब से हमने काम करने हैं, ताकि किसान भाई ने गर्मी जो है ना सिद्ध है, कोई भाई अंगोच्छा है परना है अपने सिर पर बांध दें, पानी का प्रबंध हो रहा जरूर रखा हम ज़्यादा टाइम में अपने इन्हें देखा हाँ कि भाई 11-12 बजे के बाद में पहला टाइम थे वह उठ जाया कर दी गर्मी, खाना अपना नरोगा होया करता कि तो शीत राबड़ी होया कर दी भाई कि तो ठंडा होया करता, आज के दिन वह बात नहीं रही है, सारा खान पान हमारे बदल रहे हैं, वह दही की तासीर नहीं रही है, तो बहुत सूझबूझ की काम है, गर्मी का टाइम है वह अपनी सेहत का भी ध्यान जरूर रखें। तो बात आज थोड़ी बहुत खाली टाइम पड़ा है भाई मिट्टी पानी की जाँच इस हिसाब से थोड़ी ही करांगे, लेकिन भाई समय थोड़ा गीत रागनी का हो रहा है भाई, अनुरागनी सुनवा दिया हाँ जगवीर सिंह बड़म भैया और साथिया की गाई

0: तो ये भाई ना रागनी सुनिए, एक रागनी और सुनवाऊंगी, लेकिन अपना जिक्र चाह रहा था भाई खेती बाड़ी में जो मिट्टी पानी की जांच है इसका। तो खाली खेत हैं भाई अपने, इन देखा हाँ कि जड़े भी किसान भैया ना गचाल की जो भी फसल लगानी है, तो हमने ज़रूरी है कि साल भर में तो एक बार ज़रूर कोशिश करें, वरना 6 महीना में हो जाए तो भाई और बढ़िया है, लेकिन साल भर में हो जाए तो अभी ठीक है, क्योंकि अपनी जो धरती माता है इसमें कई प्रकार के 16-17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएँ, और जिस चीज़ की भी कमी हो जाए फिर भाई फसल अपनी पूरी ने सर की नहीं चाल दी, किसान भाई ने अणसमझी में खर्चे ला बैठे हैं। तो भाई यो है कि अपने जो भी टाइम मिले तो खाली खेत हो भाई अपने चारों कोने के लगभग 8-10 फुट भीतर था अपने 4-6 नीचांगण तक माटी उठा की अपनी, और भाई कोई किलावारी नंबर है या कोई पहचान है, कोई रूख की पहचान है, जिस किला का भी आपने देखे हैं उस हिसाब से भाई उसने चारों कोने में तो मिट्टी ले लें, एक बीच में तो ले लें, और फिर उसने मिला कि अपनी जो नज़दीक में कितने प्रयोगशाला हो भाई अपने लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाए, या फिर किसान विज्ञान केंद्र तक हम संपर्क कर सके हैं, बिल्कुल फ्री जांच हो है या लगभग कोई 10 रुपये तो लागे हैं। और फिर मिट्टी पानी की जाँच तो हमने यो मालूम हो जाए भाई ट्यूबवेल ने अगर पानी हमने लेना है तो यो देखा हाँ कि आधे घंटा हमने पहले ट्यूबवेल चला दें, कोई कांच की बिल्कुल साफ शीशी में पानी हम भर लेवा, तो जाके हमने पानी भी चेक करवा लिया हाँ भाई पर्याप्त पानी कितना हमारे पास, फसल हम कौन सी ले रहे हैं उसमें पानी कितना कामयाब है, कितना देना है, ताकि आगे चल के भाई अपनी जो ज़मीन है वह 2-3 प्रकार की वो है भाई, कितने लवणीय कितने क्षारीय, तो इसमें काफ़ी समस्याएं आ जाए हैं, और ज़मीन में हमारी कितने जिंक की कमी है भाई, कितने लोह की कमी है, या फिर लगभग अपने जो भी 16-17 प्रकार के पोषक तत्व हैं कौन से की कमी पाई जाए, तो अपने तो मिट्टी पानी की जांच से उसका हमने बेरा लाग जाए, कौन सी हमने इसमें खाद डालनी है, कोई देसी डालनी है या फिर कोई जिप्सम की कमी है, कितने भाई कितने जिंक की कमी है, कितने आयरन की कमी है, लोहा फास्फोरस बहुत से इसमें पोषक तत्व पाए जाएँ, और न्यू देखा कि जड़े भी हम फसल लगाएँ उससे पहले अगर जाँच हम करवा ले हैं तो अपने जो अणसमझी के नासमझी के खर्चे हम देख के एक दूसरे ने ला जाए हाँ वह हमारे नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने बेरा लाग जाए कि भाई हमारी मिट्टी में खेत में किस प्रकार की कमी है, खेत भी हमारे भाई कई प्रकार के हों, कि तो भाई बालू दोमट मिट्टी हो, कि तो बालू रेती बासार धरती हो है बिल्कुल बेर, और फिर इसके अलावा बिल्कुल डाकर डेर जिस नाम बोलते हैं काली मिट्टी वाला, तो इस हिसाब से हमारे खेत की तासीर हों, और भाई बहुत से भाई कि तो एक परम्परागत खेती तो अटकी कि बाग भी लगाऊ हैं, कोई अन्य सब्जी फसल की खेती भी करें हैं, कितने भाई पोलिया उसका काम भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मिट्टी पानी की जांच हमने बहुत करवानी ज़रूरी है, क्योंकि जड़े पोलिया उसकी बात आ जाए तो भाई बहुत से भाई इसमें निमाटोड की समस्या आ जाए तो हमने बेरा लग जाए कि भाई हमारी समस्या कितनी है, ये बहुत से भाई अगर चाल की पौध बना भी रहे हैं, कोई DRS भी दी तो धान लगा भी रहे हैं, और किता अगर चाल की भाई ऐसा इलाका भी है अपने रोहतक भिवानी के पास पास में भाई कि तो चोह वाली धरती अगर चाल की पौध थोड़े दिन में बनाई भी गई, कितनी माटोड की समस्या नहीं आवे तो मिट्टी पानी की जांच तो हमने बेरा लाग जाए भाई ट्यूबवेल का पानी किसा है, हमारी खेत की तासीर मिट्टी कैसी है, हम ना गके के खाद डालनी, तो इस हिसाब से जो भी दिनचर्या में हम सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो खेती बाड़ी में एक घाटा नहीं आन पाओगा, चाहे मिट्टी पानी की जाँच है फिर कोई गहरी जुताई की बात है कि हरी खाद की बात है, तो हम सूझबूझ के साथ काम करें। तो चलो रागनी एक और सुनवा दें भैया जगबीर सिंह बड़म बिहार साथिया की गाई हुई।
1: हेरे कोई दुखी कोई सुखी जगत में दुखी किसी किसी के निर्वाण

और ढाल की बात करें और यही कसूती चालत ने उड़ मन मन खड़ी लखावेगी जे करी बात की टालत ने कह लक्ष्मी चंदी इतने जीवेंगे रोज।

तो भाइयो या भाइयों ने सुनी रागनी और ही देख ले भाइयों घड़ी का नहीं और ही अपना फोन इन कार्यक्रम चालू होगा तो भाई पशुधन बारे संबंधित कोई भी समस्या समाधान के बारे में फोन करके अपनी जानकारी प्राप्त करें तो ही देख लें घड़ी का नहीं भाई। इसी के साथ अपना खेत खलिहान कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त चाल लेंगे। सारे भाण भाइया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं हमारे दूसरी सफा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सफा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 16 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपके साथी दीपांशु का नमस्कार
1: और आप सभी श्रोताओं को महिमा का भी नमस्कार।
0: साथियों, आज है 29 मई का दिन और आज किसानों के मसीहा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। चौधरी चरण सिंह का मानना था साथियों कि किसान भारत की ताकत हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके हित में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। साथियों, जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक उन्होंने भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किसानों के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। 29 मई 1987 के दिन उनका निधन हुआ था। देश और किसानों के लिए किया गया उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।
1: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के महान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए लगाया। सादगी, ईमानदारी और जनसेवा उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थी। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कृषि सुधार, ग्रामीण विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना चाहिए और इसी के साथ आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं।
0: और साथियों, आज 29 मई के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा दल दिवस भी मनाया जाता है। जैसा कि हमने बताया, 29 मई के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन इस दिवस का उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखने वाले सैनिकों और अधिकारियों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत शांति बनाए रखने वाले सैनिकों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए की थी। संयुक्त राष्ट्र शांति जो सैनिक हैं, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जाकर हिंसा रोकने, सुरक्षा करने और शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं। साथियों, भारत भी संयुक्त राष्ट्र शांति में योगदान देने वाले देशों में से एक है। इस प्रकार यह दिवस हमें शांति, एकता और मानवता का संदेश देता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ये दिन उन बहादुर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नागरिक कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने विश्व भर में शांति, सुरक्षा और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को प्रोत्साहित किया। आज के समय में जब विश्व में कई भाग युद्ध, आतंकवाद और हिंसा से प्रभावित है, तो ऐसे समय में शांति रक्षा दल की भूमिका और भी अधिक ज़रूरी हो जाती है। शांति ही मानव विकास और समृद्धि का आधार है। हमें समाज में प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विश्व में स्थायी शांति स्थापित हो सके। जिन वीरों ने विश्व शांति के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, हमें उनके त्याग से प्रेरणा लेकर शांति और सद्भावना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल महिमा, और साथ में बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे। आज है शुक्रवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम युवा पसंद, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके ही कुछ फरमाइशी गीत। तो पहला गीत लिया गया साथियों काला पत्थर फिल्म से, गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है पहलगाम कश्मीर से हमारे साथी हैं पीरजादा मेहरजुद्दीन, केसरदीन और नजमदीन। रायगढ़ से हमारे साथी हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु और ऋषभ सिंह। औरंगाबाद से हमारे साथी हैं वैष्णवी जगदाले और हर्षुल सावंगी। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान।
1: इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं हमारे साथी पुणे से हैं पंकज आर्य, आदि, शैलेश और सोनम धनुषपुरी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से फरमाइश करते हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता और रिंकी शेखावत। हिंगोली से हैं शाहजी बोड़के और नंदा, और वाकोड़ी महेंद्रगढ़ से फरमाइश करते हैं उत्तम झमघाड़े, स्वराज स्वीरात पोपलवाड़। आइए दोस्तों सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म से ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। दोस्तों, शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है। जब एक बालिका शिक्षित होती है ना, तो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और एक समाज शिक्षित होता है। इसलिए बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उनके शिक्षा का महत्व और अधिक व्यापक और आवश्यक हो जाता है। शिक्षित लड़की अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझती है और परिवार और समाज के विकास में भूमिका निभाती है। वो आर्थिक रूप से भी सक्षम बनती है और आज के समय में लड़कियां खेल, राजनीति, चिकित्सा, सेना और अंतरिक्ष जैसे अनेक क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये सिद्ध करता है कि अगर अवसर मिले तो बेटियां हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।
1: बिल्कुल महिमा साथों, शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार लड़कों के लिए शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार लड़कियों के लिए भी शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। बालिका शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। शिक्षित बालिका अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है, वह आत्मनिर्भर बनती है और अपने परिवार को भी सही दिशा दे सकती है। इस प्रकार साथियों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनकर देश की प्रगति में योगदान देती हैं और शिक्षित बालिका समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज की प्रथा है या भेदभाव है, इनके खिलाफ भी जो है आवाज़ उठा सकती है। शिक्षित महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इस प्रकार बालिका शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें लड़का और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए और बालिकाओं को शिक्षा का अवसर देना चाहिए। और चलिए महिमा, बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। और ये गीत हमारे साथियों ने सुनना चाहा है राम बलराम फिल्म से। गाया है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
0: इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं हमारे साथी अकोला महेंद्रगढ़ से हैं सुशील मंदुरकर, सदानंद, गौरव और निशा। नांदूरा तिरुपति नगर से हैं संतोष बसाने, उषा, ऋषिकेश और अनिकेत बसाने। लाहौर छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर और राजकुमारी पटेल। महेंद्रगढ़ से ही हैं सदाशिव, संदीप कामले और सुधाकर कामले।
1: और घनौरी तेलीवाला से हमारे साथी हैं निसार सलमानी और नौशाद सलमानी। शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा और नसरीन परवीन। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नोरीन, आसना और मोहम्मद कैफ। हदगांव आष्टी महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं सुधाकर कामले और संदीप कामले। लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर और राजकुमारी पटेल। कलानौर से हमारे साथी हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। आइए साथियों, सुनते हैं आपका ये फरमाइशी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे राम बलराम फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ थी। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बिल्कुल महिमा, और बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत लिया गया साथियों जीत फिल्म से, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनना चाहा है अकोला से हमारे साथी हैं रमेश और वैशाली कटनकर, आगर एमपी से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमंग, आयुष और ओम प्रकाश। बेमेतरा से हमारे साथी हैं सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी, हिसार से राजेंद्र और राहुल सैनी, वाशिम से सुखदेव राउत, बागपत यूपी से एहसान अली और सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी, मटोर कैथल से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर।
0: कलालोन से फरमाइश करते हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। नरवेल महेंद्रगढ़ से हैं निर्मला और विशाल। करनाल से फरमाइश करते हैं सुधीर, नूतन, संदीप मुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा, ईशप्रीत, हरिपाल कौर और नरेंद्र तनेजा। लोहगढ़ पंजाब से हैं स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, अविराज, गुरनूर और शुभदीप। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इन सभी साथियों की फरमाइश का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे जीत फिल्म से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ थी। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: और बढ़ते हैं साथियों अगले फरमाइशी गीत की तरफ जो लिया गया है जहर फिल्म से। गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीत दिया है अनु मलिक ने। इस गीत को सुनना चाहा है रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र, जितेंद्र और मानसी शाह। सनावद एमपी से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार।
0: पिपरिया मध्य प्रदेश से है कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। आइए दोस्तों सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना जहर फिल्म से गीत गाया था उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने, गीतकार थे सईद कादरी और संगीत दिया था अनु मलिक ने।
1: और अब दीजिएगा इजाजत अपने रेडियो साथी दीपांशु और महिमा को। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनिएगा नाटक बेटियां पावन दुआएं हैं। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा पशुधन संबंधित समस्या व समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कपिल देव। कार्यक्रम सुगम संगीत में रात 8:25 पर सुनिएगा सीमा शर्मा की गाई गजलें। रात 10 बजे आप सुन पाएंगे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। इसमें आज आपको सुनवाएंगे काजल फिल्म से चुनिंदा गीत और फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। कल रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार सुनिएगा रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। इसमें कल होगा रोजगार विशेषांक, समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ।

महत्व कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर डॉक्टर कन्नौज की बातचीत का विषय होगा ज्वार व बाजरे की चारे के लिए काश्त। कार्यक्रम ग्रामीण संसार में शाम 7 आप सुन सकते हैं हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर सुनिए का कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सब रस होगा प्रातः 9:00। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:10 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनिएगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का लुत्फ ले सकते हैं आप शाम 7:30 पर। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी सुन पाएंगे आप दिन में 12:30 पर। और हरियाणवी लोक संगीत में प्रातः 8:30 पर कल हमारे कलाकार रहेंगे महावीर सिंह मीर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद। एक और पोत के 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद। और कुरुक्षेत्र में जिला संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
6: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
5: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
6: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
5: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात कर

0: करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने की। मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बने 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन तथा 21 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 16 नए स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष और समर्पित उपचार के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों में प्रतिवर्ष 34 लाख रुपए की लागत से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की।
1: स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को लगातार तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और जिला के अस्पतालों में एमआरआई सेवा और चरखी दादरी जिला अस्पताल और बहादुरगढ़ उपमंडल अस्पताल में सिटी स्कैन सेवा शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है।
1: आयुष्मान भारत योजना, चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, हम सब देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है।
0: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार 14 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है।
2: वर्ष 2014-15 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है तथा पिछले वर्ष से लगभग 3300 करोड़ ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन की कमी को पूरा करने, नए उपकरण उपलब्ध करने, जांच सेवाओं में विस्तार करने, दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।
0: मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में आज स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मंत्री और विधायक मौजूद रहे। हिसार में मौजूद कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया,
3: हिसार के अंदर 3 जगह पे सब हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, एक असरावा में, एक अकोद में, बुढ़ाखेड़ा में, और लगभग 2 करोड़ की लागत इसमें आएगी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं।
4: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। इस पोत से लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लाया जा रहा है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 6 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत में एफआईआर को लेकर श्री कृष्णलाल पंवार ने कहा,
5: जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी मुझे नजर आई तो मैंने FIR क्या दे दी है। अधिकारियों से मेरी यही अपील रहेगी कि कोई भी ऐसा अवसर ना दे जिससे मुझे कोई एक्शन लेना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ और अधिकारियों से भी यही बात कहूंगा कि हर मामले को आप निपटा करके मेरे पास सामने आए तो उसमें लोग कहें कि हमें न्याय मिल चुका। अभी किसान भाइयों ने शिकायत मुझे दी है और मैंने बाकायदा डी साहब को दी है।
0: बल्लभगढ़ में आज मुजेसर अंडरपास निर्माण कार्य विधिवत भूमि पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस अंडरपास के निर्माण से लोगों को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये अंडरपास लगभग 18 महीने में तैयार होगा।
6: 12 करोड़ की जमीन परचेज करी है और अंडरपास 12.5 करोड़ की लागत से PDOT बनाएगा और जो 6.5 करोड़ की लागत से रेलवे 30 करोड़ के आसपास की लागत से पुल बनकर तैयार होगा और जिससे मुजेसर गांव को लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को लाभ मिलेगा और 22-23 NIT संजय कॉलोनी और GT रोड से आवागमन मिलेगा जिससे कनेक्टिविटी इधर से नहीं थी।
0: हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज की फीस वसूले जाने के मामले में निजी अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने के चलते भिवानी सिविल अस्पताल के आयुष्मान के मामलों को देखने वाले अधिकारी विनोद को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी चलने, बादल गरजने और बारिश होने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
7: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के

0: बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाइयों, आज चौपाल में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिल देव जी, जो कि पशु चिकित्सालय खडवाड़ी में फिलहाल कार्यरत हैं। और जो भी पशुधन बारे संबंधित कोई भी किसान भाई ने जानकारी लेनी है या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत पशुधन के बारे में आ रही है, तो डॉक्टर साहब तो फ़ोन करके अपने सलाह मशवरा लें। और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि अपने पास कॉपी पेन हम ज़रूर रखें, ताकि डॉक्टर साहब जो बताऊँ हैं उस नाम नोट कर लें, अगर चाली फिर कोई दिक्कत नहीं आवे, उसने दोबारा भी हम अपना सके हैं कोई ऐसी वैक्सीन है, दवाई है डॉक्टर साहब, तो ये किसान भाई थोड़ी जानकारी ले। तो डॉक्टर साहब फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, तो भैया के फ़ोन ले हुए हैं। हेलो हेलो,
4: हाँ जी डॉक्टर साहब।
5: हाँ जी नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, कौन क्या क्या विषय जी डॉक्टर साहब?
5: हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया।
3: नाम और काम बताओ जी आप।
4: नाम तो सुदेश कुमार जी, गांव लाली जी, तहसील हमारी कलालौर जी, जिला रोहतक।
3: जिला रोहतक जी। कोई पशुधन बारे संबंधित कोई भी समस्या हो बताओ जी।
4: अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक नौ भी नहीं काटी है, मतलब बिल्कुल ठीक है, तैयारी की है, इसका देख रेख के बारे में बताओ जल्दी, मतलब सींग ज्यादा ना बढ़े, मतलब जल्दी तैयार हो जाए, जाको करें पदार्थ बताओ जी।
5: देखो जी, आपने ब्रीडिंग के लिए अगर तैयार करनी है ना,
4: मतलब कमजोरी ना हो, मतलब ज्यादा कमजोरी कारण सींग ना लिगड़े ज्यादा।
5: अच्छा जी, एक तो आपने ना इसके पेट के कीड़े की गोली दी है? खनिज लवण और स्टार्ट कर दो, एक मुट्ठी बाखर में खनिज लवण मिला दिया करो आप, एक मुट्ठी
4: खनिज मिश्रण।
5: हाँ खनिज, हाँ जो खनिज मिश्रण होता है अपना, आजकल वीटा का भी बहुत बहुत अच्छा आता है खनिज मिश्रण, है ना?
4: खनिज मिश्रण वीटा का काम मिलेगा जी।
5: ये अपने वीटा के जो आउटलेट है, जैसे रोहतक में है अपना, इधर गोणा बाईपास की तरफ, तो यहाँ मिल जाता है आउटलेट जहाँ भी होंगे वीटा के।
4: वीटा प्लांट बोले?
5: हाँ जी, हाँ जी वीटा प्लांट, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ मिल जाएगा आपको। एक एक मुट्ठी ना बाखर में मिला दिया करो आप।
4: अच्छा जी।
5: और पेट के कीड़े की गोली साथ साथ देते रहो।
4: हाँ
5: जी, हाँ जी, हाँ जी,
4: एक साथ छठे महीने में लग जाएगी जी, उसमें प्रेग्नेंट में।
5: हाँ जी,
4: तो मान ले उसकी खुराक, मतलब एक तो सूखे में थोड़े गिरा डॉक्टर साहब, एक खड़ गिरा, एक दरिया गिरा।
5: हाँ ठीक है, खड़ो देखो, खड़ तो आपका फैट फैट परसेंटेज बढ़ा देगा दूध के अंदर ना, चिकनाटपन है ना वो बढ़ाएगा, फैट फैट बढ़ाएगा। और आजकल ये अपना हरा चारा तो कम मात्रा में है, तूरी वूरी तो है, महीने बाद, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन चल रहा है, पीक पे चल रहा है, तो साथ साथ ना जैसे खड़ होगी अपना, सरसों वाली खड़ होगी, हाँ वो होगी, और ये दलिया हो गया, दलिया रांध के दिया करो आप, दलिया में जैसे अपना गेहूं का भी हो गया और ये भी हो गया, क्या नाम है, चोकर वोकर मिला के सारा। हाँ ठीक है ना, थोड़ी बहुत मक्की तो अब अवेलेबल है नहीं, और बाजरा तो अभी अभी ठंड में आएगा, ठीक है ना
4: जी, अभी 2 किलो दूध दे रही है जी एक टाइम।
5: हाँ कोनी संतुलित मात्रा में ना, और जो भी चीज गिरो रांध के गिरना आपने, ठीक है ना। सुनो, जब तक देती रहे जब तक ले लो आप, ठीक है ना, ये अपना आप ही बंद कर देगी, ये अपना आप ही बंद कर देगी, दूध ठंड में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर थनीला रोग बन जाएगा।
4: अच्छा जी।
5: हाँ दूध जब तक देती रहे निकालते रहो आप,
4: ठीक,
5: निकालना बंद नहीं करना, ठीक है, ये अपना आप ही बंद कर देगी, जैसे 1-1.5 महीने पहले ना पशु कर देता है नियमित तौर पे, अगर फिर भी नहीं करता तो हफ्ते पहले कर देता है, आपने दूध छोड़ना नहीं है ठंड के अंदर। हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, ना खुराक तो आप देते रहो, कैल्शियम देते रहो साथ साथ, अगर बियाने वाली है तो कैल्शियम देते हो आप? कैल्शियम दे, और 15 दिन पहले ना ब्याज से 15 दिन पहले बंद कर देना कैल्शियम,
4: ठीक है
3: जी। धन्यवाद। अगला फोन ले हुए हैं, तो डॉक्टर साहब, भाई ने बताया क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या यह रह रही है कि एक तो गर्मी का टाइम हो गया, और गर्मी का टाइम में ना वो है हरे चारे पलड़े नहीं रहे हैं कि जो पूरे पोषक तत्व तो जिसमें होया कर दे। तो आजकल गर्मी का टाइम में ध्यान तो डॉक्टर साहब मोटा मोटा यो है कि भाई बढ़िया तरीके से तो थोड़ा खिलाना है पिलाना है, अगर जोड़ में अगर डांगरा लुटा लिया तो सब तो बढ़िया रहो है।
5: जी,
3: तो के ध्यान नाम गर्मी का टाइम में राखी
5: तो जी
3: चाहिए।
5: गर्मी के टाइम में मेन तो जी हवादार होनी चाहिए, एक
3: जी
5: पंखा बिल्कुल लगा देना चाहिए, पशु का जो बाड़ा है जहाँ
3: जी
5: पशु रखते हैं वहाँ एक पंखा होना चाहिए, और बाकी हवादार कमरा होना चाहिए जिससे हवा पास होती हो अच्छे
3: हाँ
5: से, और मैक्सिमम पशु बाड़ा जो बनाओ आप
3: जी
5: इस जगह बनाओ जैसे धूप का जो मात्रा है ना वो 12 बजे के बाद बढ़ जाती है
3: जी
5: तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती
3: फोन ले
5: है।
3: डॉक्टर साहब। हेलो
4: डॉक्टर, नमस्कार जी।
3: जी नमस्कार,
5: जी
3: नाम
5: नमस्कार।
3: और काम बताओ जी,
4: मामन सिंह मास्टर मामन जोड़ी बात।
3: कहाँ से बताया आपने अमर सिंह जी?
4: जोड़ीराज गाँव है जी, जोड़ीराज।
3: अच्छा, कोई पशुधन बारे समस्या
4: हाँ,
3: बताओ।
4: एक फर्की जो जी है 2 दिन हो गए कोई अन्य
3: हाँ बोलो
4: जगह
3: बोलो,
4: विश्वास हुए आपसे। हाँ
5: बताइए जी, दोबारा बताओ, आपकी आवाज कट रही है, बताओ।
4: विश्वास चाहिए डॉक्टर ने, दोष मेरा है 3 घोड़ी की।
3: थनेला का विश्वास है जी, डॉक्टर ने
5: अच्छा
3: दोष मेरा।
5: थनेला थनेला का शक है
3: जी।
5: अच्छा, दूध के अंदर छेछड़े आते हैं, छेछड़े आते हो या फिर खून आता हो या थने में कोई सूजन हो, कोई लालकपना हो दूध में?
3: चलो फोन कट गया अमर सिंह जी का, वैसे तो आवाज आ रही थी। तो डॉक्टर साहब अपना जिक्र चल रहा था, एक तो पंखा होना जरूरी है।
5: हाँ जी
3: अगर सही बात यह है कि पहले अपने घेर में बाड़िया में अपनी में बंधिया कर दी ना, वो टाइम तो देखो ही रहे नहीं
5: हो
3: है,
5: रही
3: आज
5: नहीं,
3: पशुधन खुटत ही सीमित रह गया।
5: बिल्कुल जी, घर घर में रह गया पशु।
3: हाँ, और आजकल एक प्रचलन और चल रहा है डॉक्टर साहब इसमें, पहले कच्चे ठाण होया कर दे, रेत का बैठना उठना होया करता डांगर का, तो पशु राजी रहा करता, आजकल गद्या का सिस्टम चल
5: गद्दों
3: गया।
5: जी, देखो जी अगर गद्दे वैसे तो साफ सफाई के हिसाब से देखें तो ठीक रहते हैं,
3: ठीक
5: क्योंकि इसमें साफ सफाई हो जाती है, मान लो कहीं गोबर कर दिया पेशाब कर दिया पशु ने
3: जी
5: तो उसी टाइम क्या उसको हटा देते हैं, साफ सफाई हो जाती है, धो देते हैं।
3: जी
5: लेकिन गद्दों में समस्या ये आती है कि उसमें जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रह जाता है,
3: हाँ
5: मान लो को पशु है पर मॉइस्चर में ही वो बैठा रहेगा फिर सारा दिन।
3: बिल्कुल
5: हाँ तो फिर उसके अंदर जो चिचड़ी कलीली वाली समस्या है ना,
3: हाँ
5: हाँ उससे बढ़ सकती है, ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि चिचड़ी कलीली वहीं रहेगा जहाँ पे मान लो अपनी जहाँ पशु का बाड़ा है वहाँ पे कोई इस तरह की थाने के अंदर छुप के नहीं रहते जैसे पशु,
3: बिल्कुल
5: हाँ
3: बिल्कुल
5: चिचड़ी कलीली वहीं रहते हैं
3: हाँ, कोई
5: तो
3: दर
5: मॉइस्चर की तरफ आते हैं ये,
3: जी
5: तो मॉइस्चर वाली समस्या अगर उसको ना ड्राई रखो तो अच्छा है,
3: हाँ बिल्कुल, सूखा साफ सफाई
5: सूखा
3: है,
5: साफ सफाई
3: नहीं
5: रखो।
3: तो जो थोड़ी।
4: हेलो,
3: हेलो हेलो,
4: राम राम जी,
3: राम राम जी, नाम और काम बताओ जी।
4: गांव लुधेसर से पप्पू राम घाट बोलो जी।
3: जी पप्पू जी, कोई पशुधन संबंधी कोई समस्या हो बताओ।
4: आज पशुधन का है सर जी। देखिए
3: हाँ जी
4: सर जी, हम ये कई बार पशुओं में जो ये फूल दिखाने की समस्या आती है तो
5: जी
3: जी
4: ये कोई ज्यादा गर्मी गर्मी के कारण होता है सर।
5: देखो जी, मेन जो फूल दिखाने वाली जो समस्या होती है ना, ये ब्याने से पहले भी आ जाती है, ब्याने के बाद भी आ जाती है पशु के
4: हाँ
5: अंदर।
4: हाँ सही सही बात कह रहे हो।
5: जी, तो ये जो समस्या है ना, जेनेटिक भी होती है, मान लो माँ से चली आ रही है फिर बच्चों के अंदर आ गई, दूसरी पीढ़ी के अंदर आ गई, एक पीढ़ी से निरंतर दूसरी पीढ़ी के अंदर आती रहती है।
4: हाँ
5: दूसरी, इसका
4: डॉक्टर
5: जो रीज़न होता है ना वो ये होता है कि हार्मोन का इम्बेलेंस होता है। हार्मोन जो होते हैं, जैसे हर एक की बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन से आदमी काम करता है, सारे जो नियमित तौर पे जो क्रियाक्रम करता है आदमी जो काम करता है वो हार्मोन्स के कारण करता है। तो कई बार उसका इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, कि इस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, और उसकी वजह
4: बिल्कुल
5: से हाँ उसकी वजह से क्या होता है, ये फूल दिखाने वाली समस्या आ जाती है, पशु अपना एकदम पीछा है वो घेर देता है, और ये समस्या ना वैसे आजकल ये काफ़ी आ रही है, मान लो एक जनरेशन में आ गई तो दूसरे जनरेशन में रिपीट होती है, या तीसरे जनरेशन में भी हो जाती है कई बार, मान लो ना।
4: डॉक्टर साहब,
5: जी
3: जी जी बोलिए।
4: ये जो फूल कई बार फूल आने से पशु की क्या मृत्यु भी हो जाती है सर?
5: देखो जी, ये तो कई बार इस तरह के केस होते हैं, पूरा का पूरा जैसे बच्चा नहीं बाहर आ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता
4: हाँ
5: है, और पस बढ़ जाता है, रात बढ़ जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, उसमें टॉक्सीमिया के कारण डेथ हो जाती है, टॉक्सिन्स ब्लड में चले जाते हैं, खून में चले गए, और वो पशु वो मर जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप नियमित तौर पे इसका रख रखाव ऐसे कर सकते हो जहाँ पशु बांधो, मान लो कोई ब्याने वाली है, कोई पशु ब्याने वाला है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता उसका रह गया और वो फूल दिखा रही है, तो आप जो थाना है ना, जो आपका जो बांधने का जो जगह है, वो अगला पैर निचाई पे और पिछला पैर ऊंचाई पे, ठीक है? एक तो आप मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हो ये समस्या, और हाँ मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हो, और या फिर कई लोग झिक्की बांध देते हैं, है ना, वो बांध देते हैं,
3: लग्गी लगाते हैं जी,
5: हाँ लग्गी बोल देते हैं देसी भाषा में, हाँ जी, तो आप वो कर सकते हो। बाकी अगर ज़्यादा दिखा रही है तो आप ना अपना जो नज़दीकी पशु अस्पताल है वहाँ जाओ और उसको वो अंदर डाल लेंगे, कुछ टिक्के लगाते हैं, ठीक है ना? और हाँ, इसका क्या है, आपने मैनेजमेंट करना है बस उसके उसके लिए।
4: तो डॉक्टर साहब, देखिए खान पान का भी कोई ध्यान रखना पड़ता है इसमें।
5: देखो जी, वे ऐसे बोलते हैं भरपेट भरपेट खिला देते हो उस दौरान उसके कारण भी, लेकिन मैं कहता हूँ भरपेट से ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो सारा है ये हार्मोनल इम्बेलेंस और उसके उसके कारण जेनेटिक कारण है इसका, जो मैं मानता हूँ, ये जो दिखा फूल दिखाने वाला जो है, लेकिन हाँ खाने पाने की वजह से मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ ज़्यादा है। लोग ऐसे बोल देते हैं कि पेट दर्द के कारण पीछे प्रेशर, मैं मानता हूँ कि जो बच्चादानी में इन्फेक्शन रह गया
3: जी,
5: हाँ तो पशु क्या होगा, वो तो इन्फेक्शन निकालने का लिए जोर लगाएगा,
3: बिल्कुल
5: जोर लगाए बाद जो पुट्ठे हैं जिसको बोलते हैं, अब वो ढीले हो जाते हैं पशु के, मान लो उसको 5 बार भी आ गया कोई पशु, वैसे उसके जो जो लिगामेंट्स होते हैं ना, जिसको पुट्ठे बोल देते हैं देसी लैंग्वेज में, वो ढीले हो जाते हैं
3: जी। फोन ले, डॉक्टर साहब कट गया था भाई का पहले तो। हेलो
4: जी,
3: नमस्कार, नाम और काम बताओ जी।
4: संजय बोल रहे, पोखरी खड़ी से डॉक्टर
3: साहब। संजय भाई जी, कड़े बोले आप,
4: पोखरी खड़ी से भाई साहब
3: जी, कोई पशुधन संबंधी समस्या बताओ जी।
4: नमस्कार भाई साहब
5: जी, नमस्कार जी, बताओ जी समस्या बताओ।
4: छोटी जी अपना 8 तारीख में,
5: हाँ जी,
4: अजो जी 2-3 दिन तो गोबर में जो 2 साल लगाया उसमें जड़ में जेर का टुकड़ा रह गया जी।
5: अच्छा,
4: उसमें बताओ जी ना, मैं 40 मरबटे जमा दूध चाह दे रही थी।
5: अच्छा, कब ब्याई, 8 तारीख को ब्याई है?
4: 8 तारीख को ब्याई डॉक्टर साहब। हुआ
5: अच्छा, अभी उसने क्या नाम, वो तो 24 घंटे में गिर दी, जेर गिर दी थी,
4: जेर तो सब गिर दी, जेर तो भाई ना जितनी थोड़ा मैं दूध ना पाया, मैं थोड़ा फीस दे दिया जी, फीस नमक थोड़ा दे दिया, बोले भैया आना होगी मेरे, उसके बाद जेर तो सभी गिर दी, बहुत जल्दी उठ ली।
5: अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। अभी क्या है, इसका ना जो इन्फेक्शन है वो रह रहा है उसमें, जो इन्फेक्शन है ना, और हाँ, और ये थोड़े दिन के अंदर इसको दवाई नहीं मिली ना, इसके अंदर रात बन जाएगी और पायोमेट्रा बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में, एक रोग हो जाएगा।
4: अच्छा जी,
5: हाँ, लेकिन आप एक काम करो जी, की पशु चिकित्सालय में एक तो बच्चादानी की सफाई करेंगे वो।
4: अच्छा जी,
5: हाँ वो करवा लो, बच्चादानी की सफाई से ना सारा जो इन्फेक्शन है, ये सारा जो रादवाद है, जो भी किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो सारा निकल जाएगा, और एक दो टीके लगाएंगे वो, ठीक है ना?
4: हाँ,
5: कोई नहीं, आपके बड़े अस्पताल में डॉक्टर साहब दवाई लिख देंगे और वो आप टीके लगवा लेना वहाँ जाके ना। हाँ, लेकिन आप ये लगवा लो, इसको लेट करोगे तो अगली बारी में आपने इतना वेट करना पड़ेगा पशु भी आने के लिए। मान लो एक बार यूट्राइन इन्फेक्शन बोलते हैं, बच्चादानी में इन्फेक्शन बन गया, तो आपका क्या है, 2-3 महीने वैसे इसमें चले जाएंगे, फिर इसको आगे होने में चले जाएंगे, तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
4: एक्चुअली बात क्या है, डॉक्टर तो बड़ा डॉक्टर तुम्हारा पास ही आए थे जी, उसको दाब ज्यादा रहो जी, टाइम कम लगा, तो आपको सी दवाई बता दी, इस तरह की मैं घर लगवा ली इसके टीके पैक के।
5: देखो जी, दवाई तो ये है कि ना, एक बच्चादानी की सफाई की है, वो मैं बता देता हूँ, इनवोलोन के नाम से आता है, इनवोलोन के नाम से, इनवोलोन INVOLON,
4: बताओ INVOLON,
5: इनवोलोन के नाम से गोली आएगी।
4: अच्छा, इनवोलोन के नाम से जी।
5: हाँ, इनवोलोन के नाम, एक सुबह एक शाम गोली देनी आपने 1 हफ्ते तक।
4: अच्छा जी,
5: हाँ, बच्चेदानी की सफाई के लिए।
3: कोई लिक्विड में भी रक्षा विशेषण
5: दी? एक लिक्विड भी आता है, यूट्रीफिट के नाम से आती है, या बहुत सारे नाम आते हैं। वो प्यादी को आराम नहीं आया
4: ना जी, फिर भी थोड़ा जोर ला उसको।
5: हाँ, कोई नहीं, एक ना एक टीका लगवा लेना, वेटमेट का टीका लगवा लेना। वेटमेट का टीका लगवा लेना, सारा उसका जो इन्फेक्शन है सारा वो जोर लगाएगी और सारा बाहर निकाल देगी।
4: वेटमेट का जी,
5: हाँ वेटमेट का टीका लगवा लेना और ये दवाई स्टार्ट कर दो।
4: दोबारा
5: जी, बुखार बुखुर तो नहीं आया ना पशु में? इनवोलोन के नाम से, इनवोलोन
4: नाम के, इनवोलोन नाम से जी।
5: हाँ हाँ, ठीक है जी,
4: ठीक है जी,
3: जी संजय भाई फोन करने के लिए धन्यवाद। अगला फोन ले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब भाई ने बताया थोड़ी ही अपना जिक्रा चल रहा था पहले, अभी एक तो फूल आड़ा था और

0: फूल में है ना सबसे भारी समस्या, देखो आप बताओ हो आके भरपेट नीचे खाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या हमने पहले भी कई बार देखी हैं और अपने साथ भी बीत रही हैं। तो उसमें एक भाई ने बताया था देसी सुहागा, सुहागे के नाम थे, क्योंकि वो ठंडा होता हो गया था, सिर उसकी बिरानी किसी हो है, वो आजमाया और देखा और उसने पूरा काम कराया। डॉक्टर साहब उसकी दो खुराक दी थी सुहागे की, जो देसी अपना पंसारी के मिल जाओ,
1: अमलतास के जो कहते हैं वो तो नहीं होता, अमलतास के बीज भी होते हैं,
0: शायद अमलतास के बीज पीस
1: अमलतास के
0: रखे
1: बीज
0: हैं।
1: भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें
0: हाँ
1: इसमें क्या होता है, एक देसी उपचार और होता है
0: जी
1: इसमें, जैसे अपना एक तो इसबगोल हो गया,
0: हाँ
1: 500 ग्राम इसबगोल,
0: बिल्कुल
1: आधा लीटर तेल,
0: जी एक
1: आधा
0: बार
1: लीटर तेल,
0: जी
1: 500 ग्राम इसबगोल और अमलतास का जो ये जो बीज,
0: जी फोन ले
1: हाँ
0: डॉक्टर
1: जी,
0: साहब। हेलो
1: या देसी सुहागा बोल देते हैं जिसको,
0: हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, अपना जो देसी सुहागा था ना,
1: हाँ जी,
0: वो कई बार है ना किसान भाई ये समस्या आ जाए कि बेरा नहीं पटदा, तो फूल दिखाने की अवस्था में है ना, देखो ज़्यादा की तो नु मालूम नहीं है, लेकिन उसने फर्क पूरा कराया, पशु अपना बया नहीं था, उस तो पहले दिखाव था। और एक फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो
2: हेलो। राम राम साहब, मैं
0: जी। राम राम, नाम और गांव बताओ जी।
2: बलवान बोल रहा हूँ, खेडवाड़ी दे। हाँ,
0: जी बलवान जी, कोई पशुधन बारे समस्या समाधान बताओ।
2: एक तो गऊ है, एक जूठड़ी है, दूसरे बैरी है,
0: जी
2: वो चट्टे जहाँ है दिखता नहीं।
1: अच्छा, तो
2: और
1: आपने पेट के
2: एक
1: कीड़े की गोली दी है?
2: ना कोने दी है कीड़े,
1: पेट के कीड़े की गोली पशु अस्पताल से ले जाना खिड़वाड़ी से।
2: अच्छा, अरे एक बीता खसे जा है,
1: कोई नहीं, इसके पेट के कीड़े के कारण ऐसा है, पेट के कीड़े हैं पेट में, और
2: अच्छा
1: हाँ एक टिक्का भी लगता है, वो टिक्का भी लगवा देना आप, न जो आपका जो अपना
2: अच्छा
1: नज़दीकी पशु अस्पताल है खिड़वाड़ी में।
2: अच्छा
1: हाँ वो चीज़ें पेट के कीड़े के कारण ही ऐसा है, पशु जैसे कहीं ना कहीं मुंह मारता रहेगा है ना, अड़ंगे की तरफ मुंह
2: हाँ
1: मारेगा, गोबर भी खा लेता है कई बार
2: हाँ
1: पशु, तो ये पेट के
2: हाँ
1: कीड़े
2: हाँ
1: हाँ उस तरह के जो है ना, एक फास्फोरस की कमी के कारण भी ऐसा होता है,
0: जी
1: अगर
0: अच्छा
1: फास्फोरस की कमी हो जाए जो
0: हाँ
1: उसमें, तो ऐसा होता
2: हाँ
1: है, तो इसमें एक टोनाफोस्फोन का इंजेक्शन लगता है, वो
2: तो
1: चार टीके लगते हैं
2: लिचा
1: अल्टरनेट डे के ऊपर।
0: जी
2: लिचा का भी खसे जा
1: हाँ
2: है।
1: वो भी, हाँ वो बिल्कुल। और थोड़ा ना नमक मिलाया करो आप,
0: बलवान जी लिख लो
1: और
0: एक
1: नमक ना जो
0: बार,
1: सिंधा नमक है ना वो चटाया करो
2: अच्छा
1: पशु को,
0: लिख लो डॉक्टर साहब जो बताने लग रहे हैं ना,
2: मैं
0: एक टिक्के भी बताओ डॉक्टर साहब।
2: जाऊंगा,
1: एक टोनोफोस्फोन का टिक्का लगेगा इसके। हाँ
2: अच्छा
1: ठीक है ना,
2: चलो
1: और पेट के कीड़े
2: ठीक
1: की
2: है,
1: गोली स्टार्ट कर दो आप।
2: अच्छा राम राम साहब,
0: राम राम जी।
2: राम राम जी,
0: जी राम राम। तो डॉक्टर साहब अपना जो देसी नुस्खा था, हेलो फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो
2: नमस्कार नमस्कार जी,
0: जी नमस्कार, नाम बताओ जी।
2: समझे बोलो बस बोल रही तो ये गोली तो हमें नॉर्थ दिल्ली अम्मा ही टिकम दिल्ली के दे दी थी, सी मन देर वाले डॉक्टर साहब ने दी थी, यार डायरा वाला ना ना वो
1: कौन सी गोली है जी?
2: पता नहीं क्यों आड़ा सरकारी मेडिकल में चले गए जी, रामराज से। अच्छा
0: राम राय तो सरकारी मेडिकल में ले आए थे जी कोई।
1: क्या समस्या है पशु के, समस्या बताओ।
2: वाले देर वाले जी बता रहे थे जो खांसी
1: अच्छा
2: होती
1: वो
2: है,
1: आप वो ही कॉल कर रहे।
2: हां
1: अच्छा जी ठीक है जी।
2: हम गोली तो जमा राम रस लाया थे भी, सर भाई लाया भी था, क्यों तुम तो चार पांच पत्ते दिए थे, दो गोली है एक पैकिंग आओ जी उसकी,
1: हाँ वो जो अच्छा कोई आराम आया?
2: आज को आराम नहीं आज इसका, मतलब दो तीन दिन तो कटे और दादा दे रहा कट कट पड़े जी, और कौन पड़े जी
1: कोई नहीं,
2: इसके
1: आप ना
2: चक्कर
1: आप बच्चादानी की सफाई करवा लो,
2: में।
1: आरस दी पशु चिकित्सालय में जाओ, बच्चादानी की सफाई करवाओ 3 दिन।
2: मतलब कौन तल्ली जी फेरी है ना, मतलब दादा रखे जिसने,
1: ना ना कोई नहीं, वो सारे एक बार इन्फेक्शन क्लियर हो गया ना,
2: अच्छा
1: फिर
2: जी
1: इसका दूध भी स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्फेक्शन जब तक रहेगा दूध भी नहीं देगी ये।
2: अच्छा, इन्फेक्शन निकालने के लिए ये जो ये गोली लिखवाओ जी, अब ये गोली करेंगे
1: ये
2: काम
1: गोली
2: इसका,
1: क्या होती है, बच्चादानी की सफाई का काम करती है ये जो
2: अच्छा
1: गोली
2: जी
1: है,
2: गोली दोबारा लिखाओ जी, दाम को लिखेगी सर,
1: इनवोलोन के नाम से, इनवोलोन के नाम से
2: नाम के नाम से जी, IN
1: VOLON
2: INVLON,
1: OLON
2: ठीक है
0: N
2: सर। रोटी का बता बताओ तो जी,
1: जी
2: टीका को सब बता दो, टीका जी विटमेट का जी,
1: वेटमेट का टीका लगवा लेना, इसमें बच्चादानी में ना वो जो सारा इन्फेक्शन है वो सारा बाहर, जोर तो लगाएगा पशु
2: अच्छा
1: लेकिन वो
2: जी,
1: सारा इन्फेक्शन बाहर निकल हो जाएगा फिर उसका ना।
2: थैंक यू जी, नमस्कार जी,
0: जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब भाई ने बताया कि अपने जो ये टीके हैं जेर वगैरह निकालने के, तो ज़बरदस्ती तो देखो करना पशुधन के लिए बहुत गलत बात है अपना भाई। एक तो टाइम पीरियड है कि भाई लगभग न्यू माना है कि
1: चौबीस से
0: अमूमन
1: लेके अगर

0: 48 घंटे में
1: जी.
0: अगर पशु नेचुरल गियर देता है,
1: हाँ.
0: जेयर मतलब जो नेचुरल गियर देता है, तो ठीक है वो
1: जी.
0: अगर 48 घंटे से ऊपर चला जाता है,
1: हाँ.
0: तो 48 घंटे से मान लो एक घंटा भी ऊपर चला गया, तो वो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा बोल देते, जेयर ना गिरना.
1: हाँ.
0: तो उसमें क्या होता है, आपने फिर जेयर गिरवानी पड़ेगी, उसमें दवाइयाँ चलती हैं
1: जी.
0: जेयर आउट हो गया, जैसे कई तरह की और दवाइयाँ होती है, बहुत सारे लिक्विड आते हैं
1: जी.
0: और

0: साहब। हेलो
1: हेलो डॉक्टर साहब, राम राम। मच्छर
0: जी। राम राम। नाम और काम बताओ जी।
1: की दादरी है, धर्मवीर बोल रहा हूँ जी।
0: जी धर्मवीर जी, अपना कोई पशुधन बारे समस्या बताओ।
1: पशुधन फार्म जी, एक काटनी है, 1 महीने बाद जाएगी, खारकर काटनी है,
2: ठीक है जी,
1: वो फूल दिखाओ छोटा छोटा।
2: आप है ना, एक पहले तो एक काम करो, जो
1: हाँ
2: इसकी जो थान है ना, जहाँ बांधते हो आप पशु को,
1: हाँ हाँ
2: जो अगला पैर तो निचाई पे, थोड़ा उसको खोद के, अगला पैर निचाई पे, पिछला पैर ऊंचाई पे।
1: वो तो कर रखा है तकरीबन, ऊंचा नीचा कर रखा है।
2: हाँ, बस 1 महीना रह रहा है, तो आपने वो टाइम निकलवाना है पशु का, ठीक है ना।
1: अच्छा जी,
2: हाँ, वो
1: अच्छा
2: मैनेजमेंट से ही
1: अच्छा
2: निकलेगा। और बाकी दवाइयाँ तो आपने कैल्शियम कुल्शियम पिलाते थे पहले?
1: कल्सिन तो नहीं पिलाई जी।
2: हाँ, जब भी ये समस्या बनती है कैल्शियम की कमी के कारण भी, ये जो जो अपना फूल दिखाने वाली समस्या है वो हो जाती है।
1: अच्छा,
2: हम ये बोलते
1: ये
2: हैं कि
1: कैल्शियम
2: हाँ,
1: कैल्शियम
2: कैल्शियम पूरे
1: इसको
2: साल
1: अभी
2: पिलाया
1: पिलाने दो
2: करो।
1: जी।
2: हैं जी,
1: हाँ जी, कैल्शियम इसको अभी पिलाने दो।
2: कैल्शियम पिला सकते हो आप। एक काम करो, माईफेक्स लगवा लो। अब कैल्शियम से ज़्यादा आराम नहीं आएगा। एक माईफेक्स
1: अच्छा
2: की, हाँ, नस में लगती है दवाई, वो लगवा लो।
1: हाँ, ठीक है
2: हाँ,
1: साहब,
2: माईफेक्स की दवाई
1: ठीक
2: से आराम आ जाएगा। हम
1: ठीक है डॉक्टर साहब,
2: एक अब
1: धन्यवाद।
2: एक तो अभी लगवा लो, एक 2-3 दिन बाद के लगवा लेना। दो तो लगवा लो
1: ठीक
2: अब
1: है डॉक्टर,
2: माईफेक्स।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, नमस्कार नमस्कार।
0: जी नमस्कार डॉक्टर साहब। ये काफ़ी समस्या है ना फूल दिखाने वाले। एक तो गर्मी का टाइम हो गया यो,
2: जी
0: और गर्मी का टाइम में आजकल सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक मैनेजमेंट जिसने आपको थे ना, एक जो पशु का रख रखाव है, बांधण का है, खिलान पिलान का है, वो तासीर नहीं बैठ रही।
2: नहीं बैठे।
0: पशु में कोई ना कोई कमी है, जब ये लक्षण दिखे हैं तो जो खनिज मिश्रण है, क्योंकि पशु आज के दिन खुटत ही सीमित हो रहा है डॉक्टर साहब। पहले अपने बणी में खुलिया करता, हर एक प्रकार का भाई घास फूस चर किया करता, तो पूर्ति हो जाती। आज वो पूर्ति नहीं हो पाती, और किसान भैया ने न्यू बेरा नहीं है कि भाई आज पशु के उसके लक्षण पहचान की कमी किस चीज़ की है। तो उसने खान पान है, चाट बाखर बंटा हो, 3-4 डाल का अनाज मिश्रित मिला की, उमन नमक भी मिला दे हैं, खनिज मिश्रण भी देना ज़रूरी है। जब जाके ये जो देवे हैं उनने देखा डॉक्टर साहब, उनके भैया कई समस्या नहीं आती जी, नहीं बेरा है इस बात का। और अमूमन जो हमने देखा है कि अंधाधुंध भाई यूँ आंदलिया चला दिया, ये बाजरे का चला दिया, तो उनमें काफ़ी वो पोषक तत्व तो पूरी नहीं होंगी,
2: बिल्कुल।
0: तो के ध्यान रखना डॉक्टर
2: देखो
0: साहब।
2: जी, अगर आपका पशु 500 किलो का, हम मान के चलते हैं, एक बड़ा पशु 500 किलो का है,
0: जी
2: तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि इसको 15 से 20 किलो तो

0: बिल्कुल ये ध्यान में रखने की बात है।
1: क्योंकि आजकल की जो फसलें हैं उनसे पहले मिल जाता था, क्योंकि
0: हाँ
1: 5 माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं जो पशु को ब्याने में बड़े
0: मदद
1: उत्तम
0: कर
1: चाहिए चाहिए
0: जी
1: मदद करते हैं,
0: जी
1: क्रोमियम मैग्नीज जिंक आयरन
0: हाँ
1: और ये क्या नाम है, क्रोमियम मैग्नीज जिंक और आयरन।
0: जी
1: ये जो ये आज के टाइम में क्या है, हम पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और खेती बाड़ी में, तो ये जो सारे माइक्रो मिनरल्स हैं वो ज़मीन में है ही नहीं, उनकी जो उपलब्धता है आज के समय वो ज़मीन में है ही नहीं।
0: हाँ बात तो यही भी हो रही है डॉक्टर साहब
1: तो हमें
0: आजकल
1: खनिज लवण का देना, एक मुट्ठी में पशु को देना खनिज लवण,
0: बहुत
1: वो
0: ज़रूरी
1: बहुत
0: है
1: ज़्यादा आवश्यक है।
0: जी।
1: जी
0: और ये डॉक्टर साहब इसमें एक बात है और मान के चल रहे हैं कि जो अपना जाट बाखर बंटा हुआ करता ना, बहुत से कई किसान भाई भी हैं लेकिन आजकल डॉक्टर साहब भी बताते हैं बोले वो रांधने ज़रूरी ना होंगी, लेकिन उसमें रांधने

0: इतना दूध दे होगा।
1: देखो जी, जो पशुपालन का जो व्यवसाय है उसमें किसान की मेहनत है वो चार गुना है
0: जी,
1: और पशु के साथ अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो पशुपालन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: और पशुपालन में क्या, आपको पशुओं की तरह होना पड़ेगा, उस साथ पशु के साथ रहना है तो आपको उसी तरह होना पड़ेगा,
0: डांगर के साथ डांगर
1: डांगर बनना पड़ेगा, नहीं तो पशुपालन का व्यवसाय है। अब जैसे कई नए नए बच्चे हैं वो IITN हो गए, ये हो गए, वो पशुपालन की तरफ अग्रसर की तरफ आ रहे हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: हम डेयरी कर लेते हैं जी, वो सारा काम छोड़ देते हैं लेबर के ऊपर,
0: हाँ,
1: और वो फिर वो थोड़े दिन में नुआ जी हम तो थक गए जी, बस ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एक पशु रख रहे हो ना, एक से तीन चार भी रख रहे हो तो वो घर घर का पालन पोषण कर रहा है आपका।
0: बिल्कुल।
1: और आज के टाइम में जो खेती बाड़ी है,
0: हाँ,
1: वो तो रही नहीं,
0: नहीं, नहीं,
1: एक एक बीघा मुश्किल से बांटे आ रहा है, लोगों के जमीनें बट चुकी हैं घर परिवारों में
0: जी।
1: तो पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं अगर आप कोई भी पशुपालक भाई काम करना चाहे, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा 24/7 जी,
0: 24 घंटे।
1: और आज के टाइम तो आप अगर आप अच्छा दूध बेच रहे हो तो आप अच्छे से अच्छे रेट में बेच सकते हो, मेट्रो सिटीज हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: रोहतक से लगती हुई इतनी मेट्रो सिटीज आप कहीं बेच सकते हो आप,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल तो ऑर्गेनिक मिल्क और ये कई तरह की आप कितने मार्किंग करके जो प्राइवेट कंपनी है वो बेच रही है,
0: हाँ बेच रही है डॉक्टर साहब,
1: तो इसमें अपार संभावनाएं हैं।
0: और ओरिजिनल मिलता भी को नहीं डॉक्टर साहब, बात यह भी है कि हम न्यू मान के चलना आस लगाओ है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं,
1: वो पता नहीं, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के कहीं निकालते हैं डेयरी वाले
0: जी,
1: ये जो समस्या है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे क्या पशु को आदत पड़ जाती है, पशु इतना वीक हो जाता है, बार बार बार बार आप उसको ऑक्सीटोसिन लगा रहे हो तो वो उसकी जो बच्चादानी है वो बार बार बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसका जो अडर है वो बार बार उसकी जो मसल्स है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने का टीका लगा रहे हो, और पशु का जो दिमाग से जो दूध देता है,
0: बिल्कुल,
1: अगर उसका दिमाग का एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, अगर वो सिक्रेट नहीं होगा तो पशु दूध नहीं देगा,
0: ठीक बात है डॉक्टर साहब।
1: और आप उसको ऑक्सीटोसिन को एक्टिवेट करने के लिए, उसको सुचारू करने के लिए आप उसको टीके लगा रहे हो बार बार, तो आप टीके लगा के ना दो उसे दूध के, जो जो दूध की जो जो कि गुणवत्ता है वो कम हो जाती है,
0: बिल्कुल।
1: और ये कई जो डेयरी वाले वो करते हैं, ये जो व्यवसाय करते हैं
0: जी, बिल्कुल कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
1: ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
0: क्योंकि पशु ने अपना टाइम तो थोड़ा टाइम उका दिया ना तो हमारे सुवार निकाल दिया,
1: निकाल लिया,
0: मानसिकता हमारी थोड़ी ऐसी हो रही है आजकल
1: जी, जी।
0: लेकिन उसके प्रॉपर हम लक्षण समझे ना, आके पशु ने कई बारी एक और देखा डॉक्टर साहब, इसमें मोटी मोटी बात आ जाए कि पशु इसी जगह बंद रहा हो और कितने बाहर थे कोई भाई खरीद के लिया, वो मान लो कोई बागड़ा एरिया का अपना पशु ले आया तो उसने खाना में की पसंद है या फिर किसी चीज़ तो चमकदा हो
1: जी,
0: कोई हॉर्न वगैरह है, कोई गाड़ी की आवाज़ है, इसे भी देखने में आए हैं तो उसे जब हम पहचाना है तो पता लगा है कि भाई और इस आवाज़ सुनी थी जब अपनी यहाँ भैंस पावसी को नहीं
1: जी,
0: कि तब इतनी सी जगह बांध दी फिर वह निश्चिंत था, फिर उसने आराम से दूध दे दिया।
1: बिल्कुल जी, पशु का टेम्परामेंट होता है, इसको बोलते हैं टेम्परामेंट
0: जी।
1: पशु पहली बात तो मान लो यहाँ पे अपना ये यहाँ पे जो गाय की जो नस्ल है वो हरियाणा नस्ल है
0: जी,
1: अपने हरियाणा के अंदर है वो, आप रोहतक से लेके पूरा जींद तक हो गया, पूरा आप चले जाओ वहाँ तक सिरसा तक
0: जी,
1: तो हरियाणा जो नस्ल है वो अपनी हरियाणा की जो नस्ल है,
0: हाँ,
1: ये दूध की नस्ल है, बढ़िया गाय होती है हरियाणा की, बिल्कुल सफ़ेद गाय होती है,
0: हाँ,
1: ठीक है ना, उसका अंप भी होता है, ऊपर उसकी थुई भी होती है
0: जी।
1: तो अब साहीवाल की है, साहीवाल की पंजाब एरिया की ब्रीड है,
0: बिल्कुल,
1: ऐसी गिर है वो गुजरात की ब्रीड है
0: जी,
1: ठीक है ना, अगर हम ये चाहें तो, अगर हम ये चाहें ना हम गिर को हरियाणा में रख लें और बहुत बड़ा फार्म लगा दें और गिर से हम इतना दूध ले लें और पूरा गिर का बिजनेस कर लें
0: जी,
1: वो ऐसा पॉसिबल नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि गिर है जो वहाँ की जो लोकल जो कहते हैं ना एटमोस्फेयर से,
0: हाँ,
1: जो वहाँ का जो तापमान हो गया प्राकृतिक रूप से जो जो जो भी अपना
0: जुड़ रही है जो भी
1: ब्रीड है वही वो वहीं रखनी चाहिए
0: जी।
1: जैसे कई भाई एक दो हमारे पास आते हैं, वो जी हमने गिर का फार्म लगाया था, वो जी आज के टाइम में नहीं रहा गिर वाला फार्म, तो हम उसको ये बताते हैं जी भाई जो गिर वाली जो ब्रीड है वो सौराष्ट्र रीजन की ब्रीड है, वो गुजरात की ब्रीड है,
0: बिल्कुल,
1: वो अच्छा दूध भी वहीं देगी,
0: हाँ,
1: और सारी जो उसकी जो पशु का जो टेम्परामेंट है ना,
0: हाँ, हाँ,
1: वो उस एरिया का है,
0: क्योंकि वो प्रकृति उस टाइप उस तरह की है,
1: प्रकृति उस तरह की है,
0: उसका जो वहाँ पर,
1: हाँ, वहाँ का जो एटमोस्फेयर है, जो वातावरण है वो उसके पशु के अनुरूप है
0: जी,
1: उसके ब्याने के अनुरूप है, तो यहाँ पे जो कई तरह की जो आगे की नहीं हो रही जी, गिर ले आए थे जी, फिर हमने बेचनी पड़ेगी जी, तो आप जहाँ की जो ब्रीड है आप वही पालें, पशुपालक भाइयों से अनुरोध है, हाँ, तो आप बाहर की ब्रीड मत पालें। अब जैसे हमारी मुर्रा है,
0: बिल्कुल
1: मुर्रा, बिल्कुल हमारे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं इसको, ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं इसको
0: जी,
1: हाँ। तो रोहतक सोनीपत झज्जर वाला जो एरिया है, जींद वाला एरिया है, ये मुर्रा बेल्ट खवाई

0: बिल्कुल
1: हमारे पूरे इसका तो जो सीमन होता है वो तमिलनाडु तक भी जाता है, वहाँ
0: जी
1: की जो लोकल जो ब्रीड हैं,
0: हाँ
1: जो प्रजाति हैं पशु की,
0: जी
1: उनको विकसित करने के लिए। तो जहाँ की जो ब्रीड है अब वो वहीं पाले उनका, क्योंकि जो कभी जो विकास होगा ब्रीड का वो उसी रीजन में होगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब। और ये भी अपना जो हरियाणा प्रदेश है उसमें कई भाई बोलते हैं कि अपने देसी ये जो सफ़ेद गाय है ना, एक तो ये हैं, और कई थार पार रख ले हैं, कई अपनी HF भी बहुत से भाई बांध रहे हैं, लेकिन जो सुटेबल है, क्योंकि HF का इस टेम्परेचर में वो प्रोडक्शन नहीं हो
1: जी
0: पाओगा
1: जी जी
0: शायद।
1: जी देखो जी, HF है, ये हॉलैंड की ब्रीड है,
0: जी
1: नीदरलैंड हॉलैंड की जो है वहाँ की ब्रीड है ये, और वो दूध देती हैं, बड़ा अच्छा दूध देती हैं, यहाँ भी अच्छा दूध देती हैं। लेकिन वो मौसम, इस टाइम जो गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है,
0: जी
1: तो अब उनका भी दूध कम हो रखा है। उनको आपने ऐसी जगह रखना पड़ेगा, क्या नाम है, जहाँ पे पूरा पंखे चलते हो, एसी भी, क्या नाम है, ये जो कूलर चलते हो,
0: हाँ हाँ
1: पानी वाले जो कूलर हैं, वो एसी की
0: बिल्कुल
1: तरह ही चलते हैं उनके लिए,
0: हाँ
1: उनके
0: चलते हैं
1: सामने।
0: जी।
1: और जो हमारी जो बेचारी हरियाणा गाय है,
0: हाँ
1: वो आप चाहे कितनी गर्मी में रख लो, बेचारी वो वही भी दूध, वहाँ भी दूध देगी,
0: बिल्कुल
1: वो तो दूध देंगी नहीं अगर आप उनको ठंडक में नहीं रखोगे, उनके टेम्परामेंट के हिसाब से उनको वो वातावरण नहीं दोगे, तो वो दूध देंगी नहीं।
0: बीमारों की भी आशंका बनेगी डॉक्टर साहब
1: जी,
0: है।
1: उनका जो डिजीज रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं,
0: जी
1: जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
0: जी
1: जो जो इसको बोलते हैं, वो भी उनकी उनका बहुत कम है। और हमारी आप देसी गाय देख लो, उनकी
0: हाँ,
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता है कितनी अच्छी है।
0: क्योंकि देसी गाय तो
1: चिचड़ी
0: आप
1: रोग होता ही इनके सबसे ज़्यादा, ये
0: जी
1: जो क्रॉस ब्रीड है,
0: हाँ,
1: HF होगी, साई HF होगी, इनको होता है सबसे
0: चिचड़ी
1: ज़्यादा।
0: रो हो गया डॉक्टर साहब, और एक लंपी की भी खूब चाली थी
1: लंपी
0: अपने।
1: की बहुत समस्या चली जी, बिल्कुल, अब तो वैक्सीन आई हुई है उसकी लंपी की।
0: अच्छी प्रॉपर इलाज आ गया
1: हाँ,
0: डॉक्टर साहब।
1: प्रॉपर उसकी वैक्सीन आई हुई है, तो सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि वो जो लंपी की वैक्सीन है वो लगवाएं। और आजकल हमारा पशुपालन विभाग का FMD और HS का,
0: जी
1: गलगोटू मोहपाया का जो जो कंबाइंड वैक्सीन है,
0: हाँ
1: जो संयुक्त टीका है, एक टीका लगाते हैं हम आजकल, वो अभियान चल रहा है। तो सभी
0: अच्छा,
1: पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि जो पशु 4 महीने से ऊपर का है,
0: 4 महीने तो है
1: चार महीने से
0: जी।
1: ऊपर का है, हाँ, उसको आप सभी पशुओं को वो टीका लगवाएं।
0: इसमें डॉक्टर साहब गलघोंटू का भी मैं आ गया,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: और अपना मुंह खुर का भी
1: मुखर का भी
0: मैं
1: मैं आ गया, तो एक टीका है, संयुक्त टीका है दोनों बीमारियों
0: जी।
1: का।
0: डॉक्टर साहब फिर मानसिकता किसी अपने पशुपालक भाई की इसी हो जाएगी, पहले मेरा तो दूध तो टूट गया,
1: जी
0: दूध घटाया गया
1: जी जी देखो जी, ये जो मानसिकता है ये हमें भी देखने को मिलता है,
0: जी।
1: कई लोग लगवाते ही नहीं जी, एक काम करना, इन इनका लगा दो, दूध
0: हाँ
1: वाली अगर ना लगाइयो
0: हाँ ये वो
1: जी।
0: जी
1: तो मैं हमने ये चीज़ देखी कि पशु आज के टाइम में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक का भी है पशु, जो अच्छी अच्छी भैंसें हैं जो दूध देती हैं,
0: जो इस टाइम पे तो डॉक्टर साहब दूध मिलता कोई नॉर्मल हो रहा है 1.5-2 का
1: हाँ, पेट
0: तो
1: 1.5-2 का तो नॉर्मल रेट है,
0: जी। फोन
1: और
0: ले
1: पाँच पाँच
0: डॉक्टर,
1: लाख की भी हैं,
0: बिल्कुल डॉक्टर
1: तो ये
0: साहब
1: टीका आप जो अवश्य लगवाएं।
0: फोन ले डॉक्टर साहब।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: जी, नाम
2: डॉक्टर
0: बताओ
2: नमस्कार
0: जी।
2: जी,
0: नमस्कार,
2: नमस्कार। एक आदमी आ गया मेरे पास है। हेलो,
0: नाम बताओ जी, कौन बोल रहे हो आप?
2: मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ सर, खिदादरी साहब, पहले मिला था मैंने।
0: हाँ जी बोलो धर्मवीर जी।
2: एक भैंस है, उसके पाग के पैर में रोक खड़ी नहीं हो रही थी, दोनों पैर तकलीफ है।
1: अच्छा जी, कितने दिन से है ये समस्या?
2: उसको हो गया तकरीबन 1 महीना हो गया, पहले एक में था भी, दोनों पैर में हो गया है।
0: कैबे बैली धर्मवीर जी, वाह
2: वह 2 बार बैली थी, ही बैली है अभी,
0: जी।
1: अच्छा कब आई है ये?
2: 5-6 महीना हो गया जी।
1: अच्छा, ये समस्या मतलब इसके 2-3 महीने से है ऐसी?
2: हाँ
1: अच्छा, तो क्या नाम है इसका, इसका जी समस्या जी देखो, अगर कैल्शियम की कमी है तो उससे भी हो सकता है ये,
0: जी,
1: कैल्शियम
2: कैल्शियम
1: फास्फोरस।
2: कमी
1: हाँ, कैल्शियम फास्फोरस का जो एक ना वो होता है, बैलेंस होता है बॉडी में, अगर
0: हाँ
1: पशु पशु के खून में कैल्शियम फास्फोरस का की जो कमी है उसके कारण हो जाता है ऐसा,
2: हाँ
1: तो हाँ, तो आप कैल्शियम दे रहे हो इसको?
2: नहीं दिया जी।
1: इसको ना कैल्शियम दो एक तो आप,
2: अच्छा
1: और कुछ
2: अच्छा
1: ये भी वैसे तो इतने दिन समस्या नहीं रहती, इसका कुछ पैर के नीचे कुछ लगा हुआ हो, कुछ उसमें हो,
2: नहीं, वो कोई समस्या नहीं है जी,
1: वो आपने चेक कर ही लिया होगा जैसे।
2: डॉक्टर डॉक्टर चेक कर लिया, बोले वो कोई समस्या नहीं है।
1: एक आप ना लंगड़ा रोग भी होता है कई
0: जी
1: बार,
0: जी बिल्कुल
1: लंगड़ा रोग,
2: हाँ हाँ
1: तो ये समस्या लंगड़ा रोग की भी हो सकती है,
2: हाँ तो हाँ, फिर कोई ला कोई इंजेक्शन वगैरह जी।
1: तो इसमें लंगड़ा रोग में ना एक बार आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाओ, वैसे तो लंगड़ा रोग की कोई वैक्सीन आती नहीं है, ये सिर्फ उसी
2: अच्छा
1: एरिया में आती है जहाँ पे ये कई बीमारी देखने को मिली है, लेकिन एक
2: हाँ
1: बार आप चेक करवा लो, फिर भी लंगड़ा रोग हो सकता है, लेकिन
2: हाँ
1: कैल्शियम आप इसको पिलाओ, पहले तो
2: हाँ
1: कैल्शियम पिलाओ, पैरों की मालिश करो,
2: हाँ
1: ठीक है ना, तो ये समस्याएं आपकी क्या पता 50% कम हो जा, दो दिन में।
2: इसको गर्म पानी से करें क्या जी, नमक पानी क्या करें, कैसे करें?
1: देखो जी, वैसे तो सरसों के तेल से भी कर सकते हो।
2: हाँ
1: ठीक है ना, तो आप तेल यूज करो, हाँ उससे करो आप, कोई दिक्कत नहीं।
2: मतलब पहले सरसों के तेल की मालिश करके फिर गर्म पानी से मालिश करके?
1: हाँ मालिश करो, हाँ मालिश करो पैर की, और साथ साथ कैल्शियम और पिलाओ इसको आप ना पशु को।
2: ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी
0: जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। भाई ने बताया कि अपने ये समस्या आ जाए, चाहे वो बुखार हो, तो अपना जिक्र चल रहा था टीकाकरण का, क्योंकि टीकाकरण पशुधन में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टेम का हो गैर टेम का हो, मान की चाल रहे हैं
1: जी,
0: तो इसका ध्यान है किस हिसाब से? हम 6 महीने में है डॉक्टर साहब, या फिर साल भर में?
1: ये जो हमारा जी जो FMD और HS का ना
0: जी फोन ले डॉक्टर साहब जो है। हेलो
3: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, नाम बताओ जी। हेलो,
3: मैं दलजीत बोल रहा हूँ सर, निसार से।
0: जी दलजीत।
3: हाँ जी
0: जी, कोई पशुधन बारे समस्या बताओ जी।
3: जर्मन का
0: आवाज साफ,
1: आवाज अब आ रही है, बताओ
0: जी। आवाज नहीं मिल पा रही दलजीत भाई, ये अपना कोई थोड़ा बहुत रेंज में होके तो कितने हैं, कट गया रक्षा फोन लगा है, चलो फिर ले।
1: देखो जी, इसमें जो लोग हैं आज के टाइम वैक्सीन लगवाते हैं
0: जी,
1: उनके लिए स्पेशल अनुरोध ये है
0: जी
1: कि।
0: हेलो जी, नाम बताओ।
4: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम और काम बताओ जी।
5: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी बोलो।
5: नमस्ते अंकल।
0: जी नमस्ते भाई, नाम और काम बताओ जी।
5: अमित बोलो अंकल, सिमली गांव से।
0: हाँ अमित भाई, कोई पशुधन
5: माता से बात करियो जी, माता से बात
0: करवाओ जी।
4: राम राम जी।
0: जी राम राम।
4: डॉक्टर साहब ने जी, राम राम,
1: राम राम जी, बताइए समस्या बताइए।
4: समस्या जी यह थी, अपने सिमली गांव में ना पिछले साल तक जी वैक्सीन ना आ रही थी, ना लगे थे।
1: ठीक है जी।
4: अरे इसकी बात तो वैक्सीन आ गई थी जी, हम तो कंटिन्यू सुई लगवा करा, कह के लगवा करा जी अपने।
1: बहुत अच्छी बात है, लगवाओ जी, बिल्कुल लगवाने चाहिए।
4: ये लगवाने के बाद कई दिन पीछे जी ये मुंह पाया था आगी के कारण था।
1: तो अब की बार आई है?
4: हाँ अब की बार आई है, दो तीन साल में आई है जी, दो तीन साल बाद आया है इनमें हमारे पशुओं में बीमारी।
1: अच्छा, सारे पशुओं में आ गई या एक दो में? अभी
4: दो पशुओं का आ रही है जी, दो कटिया है जी, एक तो।
1: सबसे पहले तो आप ना इन पशुओं को कर दो अलग, इनका जो खान पीन रहना सब है वो अलग कर दो। जो आपके पांत आ रही है ना, तो एक काम करो, लाल पानी से ना, लाल पानी जो आता है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई आती है, लाल दवाई
4: सरकारी अस्पताल में तो लाल दवाई ले आए जी, और गर्म पानी में घेर के उससे धो दिए पैर।
1: हाँ वो आप धो दो, और अभी ना इसको टिक्का नहीं लगवाना पशु को।
4: अच्छा जी
1: ठीक है ना, बाहर जो अपने टिक्का कब लगवाया था, अभी लगवाया था ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें?

0: हल्दी मिला दोगे तो वो मुंह से नहीं आएगी वो
1: जी।
0: अच्छा, अब वो आप पिला दिया करो,
2: हल्दी मिलाकर वो घी पी दे दे जीभ।
0: हाँ, उसमें हल्दी और घी मिलाकर पिला दो और साथ साथ उसके जीभ पे भी लगा दो, क्योंकि अगर पैर से आ गई ना तो मुंह से भी आएगा पशु, चाहे वो दो चार दिन में आए। हाँ, बस इसका ना आपने क्या करना, रख रखाव उनका अलग रखना है, खाना पीना रहना सब अलग, जो दूसरे आपके पशु उनसे अलग कर देना, और सभी पशु आ जाएंगे।
2: इतनी तकलीफ थी, ऊंट का चालना का थी, जिस तरह लोग की गोली दे दी, इस तरह कोई तकलीफ तो नहीं होगी जी?
0: हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं, ये पैर की समस्या आती है, पैर में भी दर्द रहता है पशु के, लोक और बुखार की गोली भी रखना आप साथ, बुखार भी आ जाता है इसमें।
2: हाँ जी, लोक की गोली आता आराम हो गया, चालन लगी जी ऊंट।
0: बस बस कोई नहीं, ये दो चार दिन में अपना ये खुद ही ठीक हो जाती है, ये वायरल डिजीज होती है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी, बस आपने दूसरे पशुओं में नहीं फैलने देनी है।
2: आज दूसरे पशु आते थे दूर है जी,
0: और वैक्सीन का भी इसमें कोई रीजन नहीं है, ये तो चाहे तो वो वायरस होगा पहले ही होगा बॉडी में,
1: बिल्कुल
0: वैक्सीन लगाए बाद वो वायरस हो, वो उसका अपना रूप दिखा दिया होगा उसने।
1: जी जी,
0: तो वैक्सीन का इसमें कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है कि वैक्सीन के कारण से।
2: वैक्सीन हम तो लगवा करा जी, पड़ोसियां का भी लगवा करा हम तो जबरदस्ती।
0: हाँ, वैक्सीन तो आप सभी पशुओं में लगवाओ आपके ना, जो भी दूध वाले हैं उनमें भी लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक दो दिन दूध कम हो जाएगा।
2: हाँ जी, दूध की कोई कम बेसी ना होती, थोड़ी बहुत हो
0: है, रोग प्रतिरोग क्षमता है वो बढ़ जाती है वैक्सीन लगाने से, तो आप लगवाया करो।
1: देखो जी, घने जरूरी है ये तो, आजकल कई बारी गांव में भी सुना थे, पूरे गांव के काम डंगरा तो खाली उड़ला करे थे।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल,
1: तो ये सावधानी है इसमें, बहुत बचाव में बचाव हो क्या करेंगे, तो जो
2: पहला है ना अपना नाम लिखवा दिया करो अस्पताल में, मम्मा का वैक्सीन आते पहला हमारे लगा दिया करो
1: जी। बहुत बढ़िया बात है जी आपकी, कोशिश भी बढ़िया जा रही है। और डॉक्टर साहब ध्यान ये भी रखें भाई, और पशुपालक भी देखो इसका अगर जी। अगला फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार सर, मैं दलजीत बोल रहा था हिसार से।
1: जी बोलो दलजीत जी।
3: मेरे पास जर्मन का बच्चा है जी, कुत्ते का
1: जी,
3: उसको फीड में क्या क्या देना चाहिए?
0: कितना बड़ा है बच्चा?
3: 40-45 दिन का हो गया सर।
0: अच्छा, पहले तो आपने ये बताओ इसकी पेट की कीड़े की गोली दी है?
3: ना जी, कुछ नहीं दिया अभी तक। तो
0: सबसे पहले तो आप इसके पेट के कीड़े की गोली दो इसको।
3: अच्छा जी, अच्छा जी।
0: कैंटल के नाम से आती है या इजी पेट के नाम से भी आती है?
3: अच्छा जी,
0: ठीक है ना। तो इसका वेट कितना एक होगा? वेट
3: ओ तो होगा पौना किलो, आधा किलो होगा।
0: आधा किलो होगा ना, तो 10 किलो पे एक गोली होती है कैंटल की।
3: अच्छा जी,
0: हाँ 10 किलो पे एक गोली होती है, तो इसको एक एक तो काम करो आप ना, एक लिक्विड आती है, लिक्विड निमोसिड के नाम से आती है।
3: अच्छा जी,
0: हाँ लिक्विड है, उसको 1 ml पिला दो।
3: हाँ जी,
0: 1 ml फिर आपने पिलानी है 15 दिन बाद।
3: अच्छा जी,
0: ठीक है ना। ये आप 3 महीने तक 15-15 दिन तक पिलाते रहना, जब पशु जो अपना जो बच्चा है वो 3 महीने का नहीं हो जाता।
3: अच्छा जी,
0: और तो ये 3 महीने के बाद फिर 1-1 महीने के अंतराल पे पिलानी है आपने, 6 महीने तक, फिर 1-1 साल के हर साल में पशु की डिवर्मिंग करते रहो, पेट के कीड़े की गोली देते रहो।
3: इसमें इंजेक्शन का काम करते हैं?
0: ना ना, इंजेक्शन अलग लगेगा, ये तो पेट की कीड़े की गोली है, इसके बाद इंजेक्शन, आपने इंजेक्शन लगवाना है। पहला इंजेक्शन आपका, हाँ ये लग जाता है 1.5 महीने का, 45 days पर लग जाता है।
3: अच्छा जी, उसके बाद
0: ये आपने टीका लगवाना है, 9 बीमारियों का, 9-in-1 वैक्सीन बोलते हैं उसको, 9 बीमारियों का टीका लगेगा, 1 टीका।
3: हाँ जी, अच्छा जी।
0: और फिर उसका बूस्टर लगेगा 3 वीक के बाद, 21 दिन के बाद।
3: अच्छा जी,
0: ठीक है ना। तो आपने ये टीका है अब ये लगवाना है, फिर इसका बूस्टर लगवाना है, फिर एक बूस्टर और लगेगा, और फिर रेबीज का टीका लगेगा जब आपका पशु 6 महीने का हो जाएगा।
3: अच्छा,
0: और एक रेबीज का टीका लगवाना है फिर आपने। तो आप ये वैक्सीन और ये पेट के कीड़े की गोली ये साथ साथ स्टार्ट करवा दो अभी।
3: अच्छा, इसके सर साउंड में भी कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, कुछ खिलाने से? जैसे ये कुछ बोलते हैं गंदरा पे पियाने से भी आवाज की साउंड बढ़ जाती है
0: ना जी? ऐसी तो कोई
3: कोई नहीं,
0: नहीं नहीं नहीं। तो आप है ना एक काम करो, इसके वैक्सीन लगवाओ और ये पेट के कीड़े की गोली स्टार्ट करो। और आजकल तो फीड बहुत आते हैं, जो आप फीड की बात कर रहे थे
1: जी,
0: हाँ पशुओं के, ये तो कैनाइन के पेट के नाम से भी आते हैं, बहुत तरह के आते हैं, पप्पी के भी अलग से आते हैं, फिर ग्रोवर के अलग से आते हैं, फिर जेट्रिक के जो बूढ़े कुत्ते हो जाते हैं उनके अलग आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के पेडिग्री के भी आते हैं, रॉयल कैनिन के भी आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो घर जो कहते हैं जो आपने जो घर पे बनाया वो खिलाओ आप, दूध में जैसे सेरेलेक मिला दिया, ठीक है ना। तो आप इतने पैसा नहीं लगा सकते, तो जो आपके जैसे अब थोड़ा गर्मी ज्यादा है, बाद में आप अंडे देना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, 1-2 आप अंडे दे सकते हो। अब इस टाइम में आप पनीर दे सकते हो,
3: ठीक है।

0: का पानी में शहद मिला दिया, ये कर सकते हो आप,
1: जी
0: ठीक है
1: ठीक
0: ना। तो दूध में शहद अलग मिलाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ साथ अपना जो भी आप जो घर बनाते हैं,
1: हाँ जी धन्यवाद
0: जो आपका पशु खुश रहे खाए वो खिलाओ।
1: जी धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद दलजीत भाई। तो डॉक्टर साहब अपना जिक्र चल रहा था वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन अगला फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो
1: नमस्कार जी,
2: जी, नमस्कार जी, नाम और काम बताओ जी।
1: मैं जी महावीर सिंह बहनीबारों से बोल रहा हूँ जी।
2: जी महावीर जी, कोई समस्या बताओ
1: पशुओं से संबंधित जी,
2: जी, पशुधन बारे।
1: मेरी एक दोस्ती है जी जो आगे की होने वाली है,
2: जी,
1: और वो जय बात बोलती है, बोलने के तो इसमें आती है ही मैं तो सफेद रंगा डालती है, दो
0: अच्छा, बार बार बार बार गार रही, डाल रही है क्या जी अड़ंगा? कब ब्याई थी
1: बार
0: ये?
1: डाल दिया, दो बार डाल दिया जी,
0: ब्याई कब है पिछली बार? अच्छा,
1: ही नहीं है जी, शुरुआत है
0: शुरुआत है, नब की है।
1: जी।
0: अच्छा अडंगा डाल रहे हैं ना, तो एक काम करो जी, बच्चादानी के ना चेक करवाओ आप, जो आपका जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है आप वहाँ जाओ और चेक करवाओ। हाँ बच्चादानी में क्या पता सूजन हो किसी तरह की, अडंगा गिर रही है तो पक्का 100% इन्फेक्शन है बच्चादानी में। तो उसकी बच्चादानी की सफाई होगी, उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर एक अम्मा रुकवा के फिर आपने जब जब इसके बाड़वे बिल्कुल साफ हो जाएं,
1: अच्छा,
0: हाँ जब टूटते अम्मे में हो, जब बाड़वे साफ हो जाए, जब आपने उसका AI करवानी है, बीज टिकवाना है, हाँ बीज रखवाना है जब उसी टाइम। अभी तो इसमें बच्चादानी में इन्फेक्शन है, तो आप एक बार नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ना वो चेक कर लेंगे एक बार किस तरह का इन्फेक्शन है,
2: जी
1: और वो उसकी दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर,
2: जी धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। अगला फ़ोन ले हुए हैं डॉक्टर साहब। हेलो
1: हेलो
2: जी, नाम
1: आनंद
2: और
1: भाई, राम राम,
2: भाई राम राम मुन्ना भाई, बताओ कोई पशुधन बारे।
1: आनंद भाई राम राम, मुन्ना बोला था गांव की वाला,
2: हाँ मुन्ना भाई पहचान लिया, बताओ कोई समस्या बताओ।
1: डॉक्टर साहब राम राम, डॉक्टर
0: राम राम जी, बताओ समस्या बताओ।
1: साहब समस्या यूँ है, ज्योति है खार की वह 7वां लाग जी 24 तारीख से, ठीक
0: ठीक है जी,
1: है अरबा डॉक्टर साहब, उसका 5-7 दिन हो गया, 10 लाग गया है। हाँ
0: अच्छा 10 लग गए।
1: जी
0: अच्छा तो 10 की ना गोली गोली आएंगी।
1: अच्छा,
0: हाँ 10 की गोली आएंगी वो दे। और पेट के कीड़े की गोली दी है आपने?
1: पेट की कीड़ा की गोली तो जी दी थी मैंने, ना पहली
0: कि कब दी थी?
1: सर भी नहीं पहली,
0: ना पेट की कीड़े की गोली दो और फिर 10 की गोली दो।
1: अच्छा
0: हाँ डायरोक की गोली आती है,
1: अच्छा
0: नज़दीकी पशु चिकित्सालय में भी अगर होंगी तो मिल जाएंगे आपको, अवेलेबल होंगी तो मिल
1: डायरोक
0: जाएंगे। हाँ डायरोक के नाम से आएगी, डायरोक।
1: की इतना सर, ये दस्त
0: हाँ
1: के लिए है पीड़ा
0: डायरोक,
1: के लिए,
0: दस्त के लिए एक डायरोक के पाउच भी आते हैं और गोली भी आती है। पाउच हिमालय कंपनी की आती है, जो उसकी आती है। और डायरोक की क्या है, जो पाउच आएगा ना, एक पाउच सुबह एक पाउच शाम, चावल के मांड में,
1: अच्छा
0: ठीक है ना।
1: इसका डॉक्टर साहब मैंने जितना इंजेक्शन लगवा ली हूँ मैं दस्ता के, एक इंजेक्शन लग जाकर इसका तो 5-6 दिन लखड़ गया है, और फिर वो एक काम हो गया सर, फिर
0: अच्छा बार बार बार बार
1: ये उसमें
0: क्या,
1: खराबी है, क्या खराबी है इसका।
0: देखो जी लीवर की भी समस्या हो सकती है, लीवर की LIV-52 की आती है, सिरप आती है, वो पिला दिया करो आप पशु को। और हरा चारा ज़्यादा देते हो सूखा चारा ज़्यादा दे रहे हो?
1: हरिया और सुखा मिला के फिर
0: मिला के
1: ये
0: दो।
1: रहेगा गीवा की,
0: हाँ मिला के दो। और क्या है, थोड़ा ना जब दस्त लगे तो हरा कम कर दो,
1: अच्छा ठीक
0: ठीक है ना।
2: एक
1: है
2: मुन्ना भाई,
1: डॉक्टर साहब, यार चेक करा वहां किसने रहने दिया डॉक्टर साहब, बत्ती
0: एक दिन दस्त के बाद चेक करवा लेना, कोई नहीं। हाँ
1: सी तो कौन दिखा इसकी 7वां लाग गई,
0: अच्छा वो नहीं दिख रही, तो हो सकता है क्या पता आगे की ना हो, लेकिन कई बार पशु दिखते नहीं, दिखता नहीं, छठे सातवें
1: अच्छा
0: में भी नहीं दिखता, लास्ट में ग्रोथ ज़्यादा होती है, लास्ट के जो 3 महीने रह जाते हैं ना उसमें इतनी ग्रोथ हो जाती है पशु की, एकदम दिखने लग जाता है। तो एक बार पहले आप 10 का इलाज करवा लो इसका।
2: कोई ठण ठणा तो बेरा पाट जा रहा मुन्ना भाई की, तो दिखा लो कोई थोड़ा मोड़ा मालूम हो जाए कि भाई नया दूध से।
0: बाकी तो
2: हाँ
0: चेक कर देंगे वो, आप एक दो दिन में चेक करवा लेना, जब नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाओ।
2: 7 महीने में तो क्या दिक्कत आ गई डॉक्टर
0: ना
2: साहब,
0: जी
2: कोई
0: ना
2: दिक्कत नहीं आती?
0: ना, कोई नहीं, चेक कर लो, चेक करवा लो।
1: एक समस्या, एक सवाल होता था सब,
2: बताओ जी।
1: और दिन अपने ये आए थे सरकारी अस्पताल वाले,
0: हाँ जी
1: वो दिन डॉक्टर साहब आए थे अस्पताल में थे।
0: हाँ जी
2: जी
1: तो जी वो आपने कहा ना मूर्ति पूरा की गया है
0: तो बिल्कुल बिल्कुल जी। आज के टाइम में हर एक पशु के कान की जो 12 डिजिट का कोड होता है उसकी मुर्की लगती है, छल्ला लगता है कान में, और वो पशु जिसके भी वैक्सीन लगी है, जिसके भी मुंह खुर के गलघोंटू के टीके लगे हैं, सारे सभी का ऑनलाइन पंजीकरण होता है।
1: अच्छा।
0: भारत सरकार की साइट है, उस पर पंजीकरण होता है। हाँ, तो आप सभी ना आधार कार्ड OTP देने में ना झिझकाया करो। अगर पशुपालन विभाग की टीम आ रही है आपको वो कॉल कर रहे हैं तो उसमें OTP भी मांगता है एक दो बार, तो कई पशुपालक भाई बोलते हैं जी हम तो नहीं देते जी OTP।
2: ठीक बात है,
0: क्योंकि आजकल ये जो समस्याएं चली हुई हैं समाज में, तो अगर आपके ये जो हमारा जो प्रोग्राम है वो चला हुआ है वैक्सीन का, और हमें हर एक पशु का पंजीकरण करना पड़ता है जिस भी पशु को टीका लगाए।
2: मुन्ना भाई इसमें भी जनगणना हो, आदमिया का डालडांगरा की भी,
1: ये जरूरी हो गया
0: जी, ये जरूरी हो गया। अगर आप हाँ बिल्कुल, मुर्गी के बिना पशु का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता किसका पशु है, वो ऑनलाइन चढ़ता है ये सरकार के,
1: ऑनलाइन
0: उसकी फोटो भी लेके गए हैं, उसकी फोटो भी जाएगी ऑनलाइन, क्योंकि सारी चीजें वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगी ना। अगर आपका पशु का बीमा है तो आपकी उस साइट से हो जाएगा सारे काम, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होंगी।
2: बिल्कुल
0: ठीक है ना, अगर आपका कहीं पशु
1: तो देखो
0: जी आगे वो तो सरकारी है, जो स्कीमें हैं वो जो भी आएंगी तो वो तो मिलेंगी, बिल्कुल लोगों के लिए है वो सारी स्कीमें, है ना।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी ठीक है ना।
2: और मुन्ना भाई और बताओ, कमें और पूछना और पूछ ले तो
1: ना।
0: अगर आपको OTP भी मांगेंगे वो, आपने OTP देने में घबराना नहीं है। अगर पशुपालक अच्छा। अपने पशु अस्पताल से आपके पास फोन आता है या वो संपर्क करते हैं हाँ अच्छा। तो हाँ तो उसमें आपको को घबराने की जरूरत नहीं है। और देखो आजकल तो फ्रॉड तो चल ही रहे हैं, लोगों को सचेत भी रहना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। बट ये है कि अगर पशुपालन

0: बार जाते हैं तो लोग मना कर देते हैं,
1: जी
0: जी हम तो ओटीपी नहीं देंगे, लेकिन उनको जब पता लगता है कि पशुपालन विभाग की है ये, इनके भी ये सब मना कर देते हैं,
1: जी
0: जी हम तो ओटीपी नहीं देंगे, लेकिन उनको जब पता लगता है कि पशुपालन विभाग की है ये, इनके भी

0: अगर वो आती है गलघोंटू की समस्या,
1: बिल्कुल
0: गलघोंटू में 100% मोर्टिलिटी है, उसमें पशु पशु का जो मरने के चांसेस हैं वो 100% होते हैं,
1: 100% जी।
0: और कई बार ये दोनों बीमारियां आ जाती है इकट्ठी
1: जी,
0: तो इसमें वो एक चैलेंज और बन जाता है पशु।

0: पशु
1: जी
0: मान लो कोई 5-7 महीने का, तो उसने कोई दिक्कत तो नहीं?
1: नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप दे सकते हो।
0: जी।
1: हाँ आप दे सकते हो, बिल्कुल गाइडलाइंस हैं,
0: और
1: आप दे सकते हो।
0: छोटा छोटा जो काटड़ू बाछड़ू रख सा, वो कै महीने थी का हम देश का उस टाइम?
1: हम 7वें दिन से

0: छोटा जो काटड़ू पाछड़ू अटक सा वो क्या बिन्याती का हम देश का उस टाइम।
1: अब 7वें दिन से खुल रहा है, पलवल भी खुल रहा है
0: बिल्कुल
1: पशुपल विज्ञान के अंदर, और तो एक कोडक में है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में
0: जी
1: यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ भी जो नियमित रूप से जो कार्यक्रम है प्रशिक्षण वाले वो चलते रहते हैं।
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब मन ने भी ली थी अपने भिवानी साइड भी, भिवानी भी
1: हाँ,
0: केवी के
1: भिवानी भी
0: में।
1: केवी के है जी,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब
1: बिल्कुल चलती रहती है वो जो ट्रेनिंग की जो सुविधाएं हैं, और इसमें ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलता है।
0: हाँ बिल्कुल
1: इससे
0: मिलेगा।
1: आप जैसे विभाग की जो कई स्कीम है,
0: हाँ
1: हाईटेक डेयरी की स्कीम है या
0: जी
1: मिनी डेयरी की है,
0: बिल्कुल
1: 10 भैंसों तक की भी जो स्कीम है, 20 भैंसों तक की भी जो स्कीम है,
0: जी
1: उसका आप जो पशुपालक भाई उसका लाभ ले सकता है। और इसमें कई तरह की सब्सिडी मिलती हैं पशुपालक भाई को,
0: जी
1: और सब्सिडी जैसे जनरल कैटेगरी में 25% होती है,
0: बिल्कुल
1: एससी में 50% की सब्सिडी होती है, अगर 10 भैंसों तक का आप लोन लेते हैं
0: जी
1: मिनी डेयरी स्कीम में, विभाग की स्कीम में अप्लाई करते हैं। अगर आप 10 भैंसों से ऊपर 20 भैंसों तक में अप्लाई करते हैं
0: जी
1: तो वो है उसमें आपका इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज मिल जाता है
0: जी
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब आप चौपाल में आए, जो भी पशुपालक भाइया ने फोन कराया, भाई पप्पू राम, संजय मई, पाल बलवान, संजू धर्मवीर, सभी का पशुपालक भैया का धन्यवाद। और जो भी काम हम करें हैं भाई उसकी बारीकियां हम समझे, बशर्ते कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई सर्टिफिकेट वगैरह हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो यह है कि डॉक्टर साहब एक तो ध्यान रखें अपना खाना पिलाने का, मौसम का, हर एक तरह की बारीकियां हमने समझनी पड़ेंगी। और सभी भाइयों का धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सभी भाइयों की आपने पूरी बढ़िया जानकारी दी, संतुष्ट होंगे भाई। और ये देख लें घड़ी का निशी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है, चल लेंगे सारे भण भैया ने, राम राम।
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। अरशाद कामिल के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत है।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में आपने सुना हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से ये गीत। रिशाद कामिल के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में भारत फिल्म से। रिशाद कामिल के बोल हैं और एक बार फिर से संगीत है विशाल शेखर का।

ਤੇ ਚਾਸ਼ਣੀ। इरशाद कामिल का लिखा और विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में भारत फिल्म से। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं एआर रहमान, चिन्मय श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में गुरु फिल्म से। गुलजार के बोल हैं, धुन तैयार की है ए आर रहमान ने।

A.R. रहमान, चिन्मय श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना गुरु फिल्म से ये गीत। गुलजार के बोल थे, A.R. रहमान का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में जय हो फिल्म से। समीर अनजान के बोलों को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

समीर अनजान का लिखा और साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना, शान श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जय हो। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में सुना। गीत के बोल लिखे थे कुमार अहमद अनीस ने और संगीत से संवारा था इस गीत को शारिब तोशी ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, संगीत से सवारा है इस गीत को टोनी कक्कड़ ने और फिल्म का नाम है एक पहेली लीला।

अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म एक पहेली लीला से। मोहित चौहान की आवाज़ थी, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था इस गीत को टोनी कक्कड़ ने। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं बरेली की बर्फी फिल्म से सुमेधा करमाही की आवाज़ में। गीत संगीत आरको प्रावो मुखर्जी का है।

बरेली की बर्फ़ी, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुमेधा करमाही की आवाज़ में सुना। गीत संगीत आर्को प्रावो मुखर्जी का था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज़ों में शेरशाह फिल्म से। गीत संगीत तनिष्क बागची का है।

शेरशाह फिल्म से आपने सुना, जुबिन नौटियाल और असीस कौर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। गीत संगीत तनिष्क बागची का था। कार्यक्रम में अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में, टू स्टेट्स फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में ये गीत।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा और साथियों की आवाज़ों में सुना। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से संवारा था इस गीत को शंकर एहसान लॉय ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में लाल सिंह चड्ढा फिल्म से गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म माफ़ कीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं सीमा शर्मा की गाई गज़लें। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, इनकी आवाज़ में ये गज़ल।

0: कड़ी कार्रवाई कर रही है।
1: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपा।

0: बचना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating

कार्यक्रम में पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं काजल फिल्म से चुनिंदा गीत। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं काजल फिल्म से चुनिंदा गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपने काजल फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा था उन गीतों को रवि ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं नाटक बेटियां पावन दुआएं हैं।

0: क्या हो रहा है दीनू भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो।
1: अरे आओ आओ उजागर काका। अरे खुशी की तो बात ही है, आज पिंकी अपने ननिहाल से वापिस आ रही है।
0: भाई वाह।
1: अरे उसके बिना घर कैसा सूना सूना लगता है ना काका।
0: हाँ सो तो है, और फिर तुम्हारे तो प्राण ही पिंकी में बसते हैं, है ना।
1: अरे है भी तो कितनी प्यारी बच्ची, अभी पूरे 3 साल की भी नहीं हुई पर शरारतें तो देखो बड़ों बड़ों के कान काटती है।
0: हाँ लेकिन तुम्हारे बेटे कमल को तो वो फूटी आंख भी नहीं सुहाती। अब मैंने सुना है कि बहू भी पिंकी से बहुत चिढ़ती है।
1: सुना तो तुमने ठीक ही है काका, बेटा बहू दोनों ही पढ़े लिखे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लड़के की ही लालसा है उन्हें।
0: वैसे दीनू दोष तो उनका भी नहीं है,
1: क्यों
0: वंश तो लड़के से ही चलता है ना। अब लड़का ना हो तो कौन कांधे पर रखकर शमशान तक ले जाएगा।
1: कैसी बातें करते हो काका। अरे मैं कहता हूँ अगर लड़की ना हो तो कोई भी पुरुष अकेले संतान पैदा कर लेगा।
0: सो तो
1: अरे जिस लड़के से वंश चलाने का दम भरते हो उसे पैदा करने वाली माँ भी तो लड़की ही होती है। अगर वही ना हो तो लड़के क्या आसमान से टपक पड़ेंगे। अरे काका जब तुम जैसे समझदार लोग ही इस तरह की बातें करेंगे तब तो भगवान ही मालिक है।
0: नहीं दीनू नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। देखो हमारी संस्कृति में तो वैसे भी यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष है ही, पर यह भी तो है कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं।
1: हाँ,
0: बुढ़ापे में साथ तो लड़कों को ही रहना है।
1: क्यों मन को भरमा रहे हो काका, तुम्हारे भी तो 3-3 लड़के हैं, रह रहा है कोई साथ। सबके सब तो अपनी अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए हैं।
0: सो तो है।
1: अरे बुढ़ापे में काम तो सुमित्रा बिटिया ही आ रही है।
0: सही कह रहे हो दीनू। लो कमल आ गया।
1: आओ कमल, बड़ी देर कर दी बेटा। आओ आओ बहुरानी। अरे अरे पिंकी बिटिया कहाँ है, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही।
2: सरिता मैं सामान रखता हूँ, तब तक तुम अंदर से ठंडा पानी ले आओ।
3: जी अच्छा।
1: अरे अरे मेरी बात का जवाब दो, पिंकी को क्या ननिहाल छोड़कर आए हो। वो नन्नी सी जान बिना माँ बाप के और अपने बाबा के बिना कैसे रहेगी अकेली।
2: बाबूजी हम लोग इतनी दूर से आए हैं, पहले थोड़ी देर सुस्ता तो लेने दो।
0: हाँ हाँ दीनू ये लोग थके हुए हैं, इन्हें थोड़ी सांस तो लेने दो। तुमने तो आते ही पुलिस की तरह पूछताछ शुरू कर दी। अरे अगर नाना नानी ने कुछ दिन के लिए पिंकी को रोक ही लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा।
1: अरे काका
0: वो भी तो उसके कुछ लगते हैं, तुम्हारे पास तो पिंकी को रहना ही है, कुछ दिन के लिए ननिहाल में ही सही।
1: अरे नहीं काका वो बात नहीं,
0: सच्ची बात तो ये है कि तुझे पिंकी के बिना चैन नहीं पड़ता।
3: पीजिए पानी पीजिए। काका आपके लिए चाय या शरबत कुछ बना कर लाऊं।
0: नहीं बेटा मैं अभी कुछ नहीं लूंगा।
1: पर कमल बेटा ये तो बताओ कि पिंकी कितने दिन बाद आएगी।
2: आप तो बाबूजी बस पिंकी पिंकी की रट लगाए जा रहे हैं।
1: अरे तो इसमें इतना झल्लाने की क्या बात है, सच पूछो तो मैं तो केवल उसी का इंतजार कर रहा था। सुबह से 10 बार तो स्टेशन फोन करके ये पूछा कि पंजाब मेल कितने बजे आ रही है, पंजाब मेल कितने बजे आ रही है, और अब तुम लोग ठूंठ सा मुंह उठाकर बिना पिंकी के चले आए, और उस पर भी तुर्रा ये कि मैं पिंकी ही पिंकी रटे चले जा रहा हूँ।
2: सरिता तुम जल्दी कुछ खाने का बंदोबस्त करो, मुझे ऑफिस भी जाना है।
3: जी बस अभी बना।
1: अरे बहुरानी तुम ही बता दो कि पिंकी कितने दिन बाद आएगी।
3: बाबूजी अब तो आप उसके बिना रहने की आदत डाल ही लीजिए।
1: क्या क्या कहा बहू तुमने, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, फिर से तो कहना जरा।
2: सरिता पहले कुछ खाने को दो, भूख के मारे दम निकला जा रहा है, बातें बाद में भी होती रहेंगी।
1: ठहरो बहू। कमल सच सच बताओ बात क्या है, तुम लोग सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते। अरे आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। अरे अगर कोई अनहोनी हो गई है तो मुझे बताओ तो सही। अरे भगवान के लिए कुछ तो बोलो।
2: बाबूजी बात दरअसल ये है कि
1: बोलो बेटा।
2: सरिता तुम ही बताओ ना।
1: अरे कर्मा मारो कोई तो बताओ हुआ क्या है।
3: बाबूजी पिंकी पिंकी ट्रेन में रह गई।
1: क्या रह गई, रह गई से क्या मतलब है तुम्हारा। सरिता तुम्हें अपने पति की सौगंध, सच सच बताओ क्या गुल खिलाकर आए हो तुम लोग।
3: बाबूजी पिंकी को हम ट्रेन के डिब्बे में छोड़ा।
1: हे भगवान, हे भगवान। भगवान, हे देवी मैया रक्षा करो। अरे कमल तेरा सत्यानाश हो जाए। अरे अरे तुम्हारा कलेजा नहीं फटा तो ना फटे, पर धरती क्यों नहीं फट गई तुम्हारे इस पाप से। हे प्रभु मेरी पिंकी की रक्षा करना, अरे उसे बचाना भगवान।
2: बाबूजी,
1: अरे मर गया तुम्हारा बाबूजी, खबरदार जो आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो।
3: पर बाबूजी ये तो सोचिए कि पिंकी हमारे लिए कितनी अपशकुनी थी।
1: बहू
3: जब से पैदा हुई तभी से कोई ना कोई मुसीबत मुंह उठाए चली आ रही है।
2: और नहीं तो क्या।
1: अरे चुप चुप रहो तुम लोग। अरे बहू कैसी माँ हो तुम, जरा सोचो अगर तुम्हारी माँ ने भी यही सलूक किया होता तो। तुमने तो कोक को ही कलंकित कर दिया। अरे अरे जिसे तुम अब शगुनी कह रहे हो वो तो रौनक थी इस घर की। अरे उसके आने से तो ये भुतहा घर गुलजार हो उठा था, और तुम हो कि उसे कोसे चली जा रही हो।
2: देखो बाबूजी, अब तो जो होना था सो हो गया। पंजाब मिल तो अब तक सैकड़ों मील दूर निकल चुकी होगी।
1: देखोगे तो अब तुम कमल। उजागर काका आप जरा मेरे साथ आओ।
0: कहाँ चलना है दीनू?
1: अरे आप आइए तो सही। पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो ये दिन देखने को मिला। मेरे रहते ऐसा घोर अनर्थ, इसका दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए।
0: दीनू ये तो बताओ कि हम चल कहाँ रहे हैं?
1: अरे काका थाने में चलकर रिपोर्ट लिखवानी है।
0: क्या अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगे तुम?
1: अरे काका बेटा तो उसी क्षण मर गया जिस क्षण उसने पिंकी को छोड़ा।
0: लेकिन फिर भी।
1: नहीं काका नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं।

0: खेमकरण,
1: आपने बुलाया साहब?
0: हाँ खेमकरण, यहाँ आओ
1: जी।
0: खेमकरण, ये दीनू हैं, इनकी पोती पंजाब मेल में छूट गई है, ट्रेन ग्वालियर पहुँचने वाली होगी, वहाँ खबर करो और ये पड़ताल करवाओ कि S5 बोगी में छूटी लावारिस बच्ची अब कहाँ और किसके पास है। हाँ, बच्ची की उम्र लगभग 2.5 वर्ष की है।
1: जी साहब।
0: तीनू, तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी पोती जरूर मिल जाएगी, ऊपर वाला सब देखता है।
2: अब तो ऊपर वाले का ही भरोसा है साहब, मेरे बेटे बहू के साथ कोई रियायत नहीं करना, उन्होंने मुझे जीते जी नरक दिखा दिया।
0: हाँ, अपराध तो उनका सचमुच बहुत बड़ा है, पर दीनू, एक तो तुम वैसे ही पोती के गम में हलकान हो, ऐसे में अगर बहू बेटे हवालात में पहुंच गए तो तुम्हें और भी मुश्किल होगी।
2: अरे नहीं साहब,
0: इसलिए फिलहाल केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख रहा हूँ।
2: ना दरोगा जी ना, आप तो उन दोनों के खिलाफ मेरी नामजद रिपोर्ट दर्ज करो।
3: तीनू, दारोगा जी ठीक कह रहे हैं, उनकी बात मान लो
2: तो।
0: और तुम्हें एक बात बताऊं दीनू।
2: क्या साहब?
0: तुम्हारे दर्द को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, पर हरियाणा में तो ऐसी घटनाएं आम हैं। अपनी 23 साल की नौकरी में ऐसे 20 केस मेरे सामने आ चुके हैं।
2: हे भगवान,
0: तुम सचमुच महान हो दीनू, वरना ज्यादातर केसों में तो दादा नाना खुद ही लड़कियों को इस तरह ठिकाने लगाने में सहयोग करते हैं।
2: अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ दरोगा जी कि ऐसा करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो इनके हौसले बढ़ते रहेंगे। अरे जरा सोचिए तो, अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो बहुएं कहां से आएंगी, समाज कैसे चलेगा? अरे मैं तो कहूं अनर्थ हो जाएगा दरोगा जी, अनर्थ।
0: दीनू, तुम पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं हो, पर बातें बहुत समझदारी की करते हो। सचमुच अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो समाज चलेगा कैसे? तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे बेटे बहू को सजा तो मिलेगी ही, और तुम्हारी पोती भी जल्द ही तुम्हारी गोद में होगी।
2: अरे अरे, आपकी वाणी में सरस्वती का वास हो दरोगा जी। हे भगवान, हे भगवान, मेरी पिंकी को एक बार मुझे वापिस दे दे, फिर तो मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। कैसी तो गर्मी पड़ रही है, पता नहीं किसी ने उसे 2 घूंट पानी भी पिलाया होगा कि नहीं। नन्ही सी जान को किस बात की सजा दे रहा है भगवान, किस बात की सजा दे रहे हो भगवान?

0: अरे भाई डॉक्टर, सभी अखबारों ने आपकी स्पीच को बड़ी प्रमुखता से छापा है। हरियाणा में भ्रूण हत्या पर बड़ी तर्कसंगत बातें कही आपने।
1: वर्मा जी, अखबार वालों को कुछ ना कुछ छापने को तो चाहिए ही। सो आज इस गरीब का नंबर आ गया। भाई आप वकील लोग तो आए दिन छपते ही रहते हो।
0: यार डॉक्टर, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं।
1: हाँ पूछो ना।
0: सेमिनार में तो आपने कहा कि भ्रूण हत्या महापाप है, गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण गैर कानूनी है, पर आपके नर्सिंग होम में तो ये दोनों काम बहुत धड़ल्ले से चलते हैं।
1: अरे वकील साहब, आप भी कमाल करते हो। भाई आप भी तो संगोष्ठियों में सत्य की महत्ता का बखान करते नहीं थकते, और अदालत में जिस चतुराई से झूठ को सच में बदलते हो ना, सारी दुनिया जानती है। छिपा है क्या किसी से?
0: अरे भाई वो अलग बात है।
1: लो अपनी बारी आई तो अलग बात हो गई। आपका भी जवाब नहीं वकील साहब।
0: पर डॉक्टर यह देखो ना, अखबार में आपके ही हवाले से लिखा है कि हरियाणा में लैंगिक अनुपात की स्थिति दिनों दिन बयारे होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह प्रदेश अनाचार और अनैतिकता का गढ़ बनकर रह जाएगा।
1: तो बिल्कुल सही बात है वर्मा जी। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा आंकड़ों पर गौर करना होगा। कहिए तो बताऊं?
0: हाँ हाँ बताओ ना।
1: देखिए, हरियाणा में औसतन 1000 पुरुषों की

0: होंगी तो बहुएं कहां से आएंगी, समाज कैसे चलेगा। अरे मैं तो कहूं अनर्थ हो जाएगा दरोगा जी, अनर्थ।
1: दीनू तुम पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं हो, पर बातें बहुत समझदारी की करते हो। सचमुच अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो समाज चलेगा कैसे। तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे बेटे बहू को सजा तो मिलेगी ही, और तुम्हारी पोती भी जल्द ही तुम्हारी गोद में होगी।
0: अरे अरे आपकी वाणी में सरस्वती का वास हो दरोगा जी। हे भगवान मेरी पिंकी को एक बार मुझे वापिस दे दे, फिर तो मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। कैसी तो गर्मी पड़ रही है, पता नहीं किसी ने उसे दो घूंट पानी भी पिलाया होगा कि नहीं। नन्ही सी जान को किस बात की सजा दे रहा है भगवान, किस बात की सजा दे रहे हो भगवान।

0: अरे भाई डॉक्टर, सभी अखबारों ने आपकी स्पीच को बड़ी प्रमुखता से छापा है। हरियाणा में भ्रूण हत्या पर बड़ी तर्कसंगत बातें कही आपने।
1: वर्मा जी, अखबार वालों को कुछ ना कुछ छापने को तो चाहिए ही। सुहाज इस गरीब का नंबर आ गया भाई। आप वकील लोग तो आए दिन छपते ही रहते हो।
0: यार डॉक्टर, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं।
1: हाँ पूछो ना।
0: सेमिनार में तो आपने कहा कि भ्रूण हत्या महापाप है, गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण गैर कानूनी है, पर आपके नर्सिंग होम में तो ये दोनों काम बहुत धड़ल्ले से चलते हैं।
1: अरे वकील साहब, आप भी कमाल करते हो भाई। आप भी तो संगोष्ठियों में सत्य की महत्ता का बखान करते नहीं थकते, और अदालत में जिस चतुराई से झूठ को सच में बदलते हो ना, सारी दुनिया जानती है। छिपा है क्या किसी से?
0: अरे भाई वो अलग बात है।
1: लो, अपनी बारी आई तो अलग बात हो गई। आपका भी जवाब नहीं वकील साहब।
0: पर डॉक्टर, यह देखो ना, अखबार में आपके ही हवाले से लिखा है कि हरियाणा में लैंगिक अनुपात की स्थिति दिनों दिन बयारे होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह प्रदेश अनाचार और अनैतिकता का गढ़ बनकर रह जाएगा।
1: तो बिल्कुल सही बात है वर्मा जी। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा आंकड़ों पर गौर करना होगा। कहिए तो बताऊं?
0: हाँ हाँ बताओ ना।
1: देखिए, हरियाणा में औसतन 1000 पुरुषों की,
0: मैं तो यह सोच कर परेशान हूँ कि आखिर ये 1000000 लोग पुरुष करेंगे क्या?
1: ये पुरुष अनैतिकता की ओर उन्मुख होंगे, और क्या करेंगे। समाज में अनाचार बढ़ेगा, दफ्तरों का माहौल खराब होगा, वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, और आखिर में एक दिन ऐसा आएगा जब धन धान्य से संपन्न यह प्रदेश अपराध और विपन्नता के गर्त में जा गिरेगा।
0: ओह सच में छोटा साहब, मुझे तो अब तक ये अंदाज ही नहीं था कि लैंगिक विषमता की यह महामारी अपने प्रदेश की ऐसी भीषण तौहे की ओर धकेली है। इसका निदान क्या है?
1: भाई निदान तो यही है कि कन्याओं की भ्रूण हत्या रोकी जाए, कन्या को जन्म देने वाली माताओं को प्रोत्साहित किया जाए, स्त्री साक्षरता को बढ़ाया जाए, और क्या।
0: भाई डॉक्टर, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ।
1: हाँ कहो।
0: भाई मैं पेशे से वकील जरूर हूँ, पढ़ा लिखा भी माना जाता हूँ, पर आज तक ये बात इतने अच्छे ढंग से मेरी समझ में नहीं आई थी।
1: चलो अब तो समझ गए ना।
0: हाँ यह तो समझ गया, पर एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही।
1: अब क्या
0: यार, बातें तो तुम इतनी बड़ी बड़ी करते हो, पर तुम्हारे अपने नर्सिंग होम में।
1: भाई वकील साहब, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं।
0: हाँ ठीक है
1: भैया, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। और भाई पैसा किसे बुरा लगता है जेब में आता हुआ।
0: अरे भाई छोड़ो इन सब बातों को डॉक्टर, पर ये बताओ तुम्हारे नर्सिंग होम में रोजाना ऐसे कितने केस आ जाते हैं?
1: तुम भी यार वकील साहब हद ही करते हो, कभी ऐसी बात पूछते हो कभी वैसी बात पूछते हो। भाई सामान्यतः तो 4-5 केस रोज आते हैं, लेकिन कभी कभी 10-12 भी हो जाते हैं। और तुम जान लो कि पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर ये टोटल गिनती गिनो तो अब तलक ऐसे करीबन 50,000 मामले निपटा चुका हूँगा मैं।
0: तो क्या इन 50,000 कन्याओं की भ्रूण हत्या करते समय एक बार भी आपका हाथ नहीं कांपा?
1: भैया अगर डॉक्टर का हाथ कांपने लगे

0: तब तो हो गया काम।
1: एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी आपकी बातचीत में शामिल हो सकती हूँ?
0: हाँ अवश्य, पर आप अपना परिचय तो दीजिए।
1: जी, किरण नाम है मेरा। दरअसल मैं भी एक डॉक्टर हूँ और उसी सेमिनार से वापस लौट रही हूँ जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।
0: वेरी गुड। ओह, तो इसका मतलब है आप भी अब झांसी चल रही हैं?
1: हाँ, वहाँ होने वाले सेमिनार में मुझे भी बुलाया गया था।
2: लो, अब तो दो डॉक्टर मिलकर एक और एक 11 हो गए। अब तो मेरा चुप रहना ही बेहतर है।
1: नहीं वकील साहब, मैं तो आपके कारण ही अपने को इस बातचीत में शामिल करने से नहीं रोक सकी।
2: ऐसा?
1: जी हाँ, हिसार में मेरा भी मैटरनिटी होम है। उसमें चोरी छिपे लिंग परीक्षण भी होता था और गर्भपात भी।
2: होता था से मतलब?
1: सेमिनार में जब मैंने हुड्डा साहब की स्पीच सुनी तो आंखें खुली की खुली रह गई। और मैंने तो तभी संकल्प ले लिया कि आज के बाद ये सारे काम बंद। बल्कि ये भी तय कर लिया कि अब तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरे हालात समझाकर उन्हें कन्याओं का उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए प्रेरित करूंगी।
2: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, पर यहाँ हुड्डा साहब का असली चेहरा देखकर मुझे बहुत आघात लगा। मुझे तो अचानक ही गांधी जी का एक प्रसंग याद आ गया।
2: कौन सा प्रसंग?
1: एक बार एक महिला अपने 5 साल के बेटे को लेकर बाबू के पास पहुंची। वो बोली, बाबू ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसे मना कर देंगे तो आपके मना करने से ये जरूर मान जाएगा।
2: बापू ने क्या किया?
1: बापू ने कहा, ठीक है 3 दिन बाद आना। बुढ़िया वापस लौट गई और 3 दिन बाद जब वो फिर आई तो बापू ने बालक से कहा, बेटा ज्यादा गुड़ खाना अच्छी आदत नहीं है। बालक ने तुरंत कहा, जी बापू अब से नहीं खाऊंगा।
2: पर यह बात तो वो 2-3 दिन पहले भी कह सकते थे।
1: ठीक, यही सवाल बुढ़िया ने भी बापू से किया। बापू बोले, माई पहले जब तू आई थी तब मैं स्वयं भी गुड़ बहुत खाता था। इन 3 दिनों में मैंने ये आदत छोड़ दी है, अब मेरे कहे का असर होगा। ये बात 3 दिन पहले मैं किस मुंह से कहता?
2: बहुत खूब, कुछ समझे हुड्डा साहब?
1: हुड्डा जी समझे या ना समझे, पर मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने एक गलत और अनैतिक आदमी को अपना आदर्श मान लिया।
0: किरण, मुझे भी तो कुछ कहने दो।
1: अब आपके पास है ही क्या कहने को? आपको डॉक्टरी करते हुए 30 साल से अधिक हो गए, जबकि मेरी तो अभी कुल उम्र भी इतनी नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि आप जैसे मुखौटे लगाकर जीने वाले आदमी धन कितना भी कमा लें लेकिन आत्मसंतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी तो आंखें खुल गई, पर आपको उन 50,000 कन्याओं की चीखें कभी चैन नहीं लेने देंगी जो आपके हाथों गर्भ में ही कत्ल कर दी गई।
0: तुम ठीक कह रही हो बेटी, आज तुमने और वकील साहब ने मेरी आंखें खोल दी। दरअसल आज से पहले किसी ने मुझसे इस तरह कुछ कहा ही नहीं।
1: आपने बेटी कहा है तो एक वचन दीजिए।
0: कहो बेटा।
1: यही कि आज के बाद ना तो आप गैर कानूनी ढंग से लिंग परीक्षण करेंगे और ना ही भ्रूण हत्या।
0: अरे मेरी तो 7 पुश्तों की तौबा, आज के बाद अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो भगवान मुझे नरक में भी स्थान ना दे।
1: सच?
0: सच्ची एकदम।
2: अरे ये तो सच्ची मुच्ची कमाल हो गया किरण बेटी, मेरी बात ये सुनने को तैयार ही नहीं थे और तुमने तो तनिक सी देर में इनकी काया ही पलट दी। अच्छा किरण, यह तो बताओ तुम्हारे पतिदेव क्या करते हैं?
1: पता नहीं।
2: मतलब
1: ये कि जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो कैसे बताऊं कि पतिदेव क्या करते हैं?
2: शादी नहीं हुई तो फिर ये बच्ची?
1: बच्ची? ये बच्ची ये मेरे साथ थोड़ी है।
0: अरे तो फिर ये है किसके साथ?
1: सचमुच ये तो बड़ी देर से अकेली ही सो रही है और इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया मेरा। कितनी प्यारी बच्ची है। पर
2: हाँ सो तो है, पर आपके माँ बाप कहाँ हैं?
0: हम अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
2: लगता है धोखे से छूट गई हैं।
1: नहीं, धोखे से कहीं कोई अपनी औलाद छोड़ देता है क्या? मुझे तो लगता है बच्चियों से नफरत करने वाले कोई माँ बाप इसे जान बूझ कर लावारिसों की तरह ट्रेन में छोड़ गए हैं और उनका बस न चला होगा, नहीं तो वे इसे मार कर ही फेंक देते।
0: जरूर यही बात है।
2: पर अब क्या होगा?
0: अरे होना क्या है, ऐसा है वर्मा जी, ट्रेन में जीआरपी का स्टाफ चल रहा होगा, भाई उसी के सुपुर्द कर देते हैं इसे।
1: नहीं अंकल, जीआरपी को इन्फॉर्म जरूर करेंगे, पर बच्ची को मैं अपने साथ ले जाऊंगी।
0: भाई तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे?
1: नहीं, मेरे मम्मी पापा तो बेटियों को भगवान का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं।
0: अच्छा, भाई वाह।
1: और क्या, पापा कहते हैं बेटियां तो स्वर्ग से इतनी पावन दुआएं हैं, जिसको लग जाए उसका जीवन ही धन्य हो जाए।
2: भाई वाह।
0: भाई गाड़ी धीमी हो रही है, शायद आगरा स्टेशन आ रहा है, हम यहाँ पुलिस वालों को सूचना तो दे ही देते हैं।
3: कृपया ध्यान दें, पंजाब मेल की S5 बोगी में रोहतक की एक बच्ची रह गई है। GRP का स्टाफ बोगी के पास पहुंच रहा है। यदि किसी यात्री को इस बच्ची का पता हो तो कृपया पुलिस को जानकारी देने का कष्ट करें, धन्यवाद। कृपया सूचना दोबारा सुने, पंजाब मेल की S5 बोगी में रोहतक की एक बच्ची रह गई है। GRP का स्टाफ बोगी के पास पहुंच रहा है। यदि किसी यात्री को इस बच्ची का पता हो तो कृपया पुलिस को जानकारी देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
1: अरे ये तो इसी बच्ची के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है।
2: इसका मतलब बच्ची धोखे से ही ट्रेन में रह गई है।
1: नहीं वर्मा जी, ये तो संभव ही नहीं है, जरूर कोई और बात है।
0: भाई और क्या बात हो सकती है?
1: क्या पता।
0: ओ खैर हमें क्या, भाई आप तो GRP वाले जाने और उनका काम जाने।
1: हुड्डा साहब, मैं तो बच्ची के माँ बाप के पास जाऊंगी, देखूं तो सही कि किस कारण अपने कलेजे को पत्थर का बनाकर उन्होंने बच्ची को इस तरह त्याग दिया। अब मैंने जिस मिशन का बीड़ा उठाया है उसकी शुरुआत यहीं से सही।
2: पर क्या सेमिनार छोड़ दोगी?
1: सेमिनार में क्या रखा है वकील साहब?
0: ठहरो किरण बिटिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
1: सच अंकल?
0: हाँ, वो देखो इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची हमारे पास है।
4: अच्छा।
0: इंस्पेक्टर साहब, हम लोग भी रोहतक के ही रहने वाले हैं, क्या हम लोग आपके साथ चल सकते हैं?
4: हाँ बिल्कुल, जरूर चलिए।
0: जी शुक्रिया, चलिए
4: चलिए।

0: मेरी पिंकी बिटिया का कहीं कुछ पता लगा?
1: हाँ दीनू, बड़ी अच्छी खबर है तुम्हारे लिए।
0: क्या?
1: तुम्हारी पोती मिल गई है।
0: अच्छा?
1: और कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाली है।
0: हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी लाज रख ली।
1: अरे दीनू देखो, तुम्हारी पोती आ गई है।
0: अरे अरे पिंकी बिटिया,
1: देखो ये हैं डॉक्टर किरण और ये डॉक्टर हुड्डा।
0: अच्छा?
1: जो इसको लेकर आए हैं, गाड़ी में इनको तुम्हारी पोती मिल गई थी।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया माँ।
2: अरे काका, शुक्रिया वुक्रिया छोड़ो, मुझे पहले इसके माँ बाप से मिलवा दो।
0: रहने दो बेटी, क्या करोगी।
1: अरे मुंशी जी, जरा उन दोनों को यहाँ बुलाना तो।
3: अरे कमल, सरिता, तुम
4: डॉक्टर साहब।
3: अब मैं समझा, तो वो टेस्ट तुमने इसलिए कराया था। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि तुम लोगों ने पली पुसी बच्ची गाड़ी में छोड़ दी?
4: हम सर बहुत बड़ी भूल होगी डॉक्टर साहब।
3: भूल हो गई? अरे सरिता, तुम तो माँ थी, तुम्हें ही कुछ सोचना चाहिए था।
5: सचमुच हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे।
0: आइंदा ऐसा मौका मिलेगा तब ना।
3: ऐसा नहीं कहते काका, मुझे लगता है कि ये लोग बहुत मन से और सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हैं। इन्हें एक मौका तो तुम्हें देना ही चाहिए काका।
4: बाबूजी, बस इस बार माफ कर दीजिए।
5: हमें माफ कर दीजिए बाबूजी।
4: अब से हम लोग पिंकी को जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखेंगे। बाबूजी, इस बार हमें माफ कर दीजिए। अब से हम लोग पिंकी को जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखेंगे।
5: बाबूजी, अब हम समझ गए हैं कि बेटियां पावन दुआएं होती हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी,
4: माफ कर दीजिए।

बेटियां पावन दुआएं हैं, अभी सुना आपने ये नाटक। लेखक थे रविंद्र श्रीवास्तव। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वालों को मेरा यानी रीटा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है आप सबने चांडूर बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खडसे, रक्षा ताई पुणे से, पंकज वाड़ोदे आर्या आदि, शैलेश सोनम धनुषपुरी बीटी वाड़ोदे, जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब मीनाक्षी चरपे चंद्रप्रभा वाड़ोदे, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना सुमित सुरभि अनीता खुराना राजीव ढींगरा और कन्हैया लाल। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आप सबकी पसंद पर।

नया दौर, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं प्यासा फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। साहिर लुधियानवी के बोलों को संगीत दिया है एसडी बर्मन ने। सुनना चाहा है आप सबने शेरगढ़ मलोट पंजाब से बलराज राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी बेबी, कुदरत, मनप्रीत कालका, मेवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, पिरदा कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफराज भागलपुरी, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज, काबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर प्यासा फिल्म से ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में आपने सुना प्यासा फिल्म से ये गीत। साहिर के बोल थे, एस डी बर्मन का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत दिया है एस डी बर्मन ने। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।
1: हाल कैसा है जनाब का,
2: क्या ख्याल है आपका।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और एस टी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। एस एच बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बता दें, राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल अंजुलता आदित्य कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक रोशन वंशीलाल रेखा श्रीवास्तव श्वेता देवी सुरुचि दिशा लंबी श्रीवास्तव, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक अभी निशु देबू परी पीहू पाखी कौशिक, नया पारा भिराई से बसंत सूर्यवंशी सरोज ईश्वरराज चंद्रकांत प्राची ट्यूशी सूर्यवंशी, सेड़गर गांव से नजीत कौर जसबीर कौर हसनप्रीत कौर मान, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, वडारी देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े शिव सागर इंदिरा बाई सुनैना खोबरखेड़े तनुजा, खांडवी जलगांव से राम धाड़े दीपाली स्वराज धाड़े, मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा सतनाम कौर दिलप्रीत गगनदीप रौनकदीप कौर, खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोनिया कविता विशाल विवेक सोनू मोनू रानू अजय अनाया सपना शिवी सलोनी, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत शत्रुघ्न गौरव, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल रोशनी अंकुर इंदु सुनील जनागल। सुनते हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत।

अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक, डब्वाली हरियाणा से जेके बोकलिया, सुनीता बोकलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकलिया, नया पारा भिरई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला, गैरी, विकास इंदौरा, प्रियंका, रमन, ऋतु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल, किंशुक खन्ना और दीपांशी इंदौरा, सादुल शहर से ये खत आया है ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का, राजनगर मधुबनी से ये खत हमें लिख भेजा है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता, रुद्र और रिद्धि गुप्ता ने, लखनऊ से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम पलक और पंखुरी गुप्ता ने। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सहरा फिल्म से गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, रामलाल का संगीत है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना सहरा फिल्म से ये गीत। हसरत जयपुरी की बोल थी, रामलाल का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। भरत व्यास के बोलों को संगीत दिया है वसंत देसाई ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना सहरा फिल्म से ये गीत। हसरत जयपुरी की बोल थी, रामलाल का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। भरत व्यास के बोलों को संगीत दिया है वसंत देसाई ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

गुनगुन, अलीका डफाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, रोहतक से राजेश दुग्गल, पूजा दुग्गल, अक्षयदीप सिंह दुग्गल, अजयदीप सिंह दुग्गल, धामनी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश

0: के वल्ला जवा
1: और गुनगुन अली का डफाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरव शाइना और निवान शर्मा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित और मोहित बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग अंजू और मोहित नारंग बेरड़ी से हुकुम करमरकर सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर रोहतक से राजेश दुग्गल पूजा दुग्गल अक्षयदीप सिंह दुग्गल अजयदीप सिंह दुग्गल धामनी मनोरा से तुलसी राम डेरे मायावती डेरे संदेश
0: जल्दी ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा
1: चकला बाजार सामाना से पप्पू राज खुशदिल संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर रवनीत और निशु गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रकाश प्राजक्ता प्रांजलि सोहम बोरगांवकर ये खत आया है भाटापारा दत्रेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर वर्मा दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा का संभाजी नगर से ये खत हमें लिख भेजा है राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश ने आप सबने सुनना चाहा है आशा भोसले की आवाज़ में साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से गीत गीतकार हैं शकील बुदाइनी संगीतकार हेमंत कुमार

0: साहिब बीवी और ग़ुलाम, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने आशा भोसले की आवाज़ में सुना। शकील बदायनी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शहनाई फिल्म से। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।
1: न झटको जुल्फ से प

शहनाई फिल्म से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आम्रपाली फिल्म से गीत। शैलेंद्र के बोलों को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बता दें, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, जामरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव, तेजल यादव, लछनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष और आरू साहू, वैष्णव कॉलोनी सनावर से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, महाराष्ट्र हिंगोली से शाजी बोर्ड के नंदा, हनुमान आलम, स्वराज जमदाड़े, दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार और गर्विश के साथ तमन्ना बंसल, बलियाली जिला भिवानी से। सुनवा देते हैं कार्यक्रम के अंत में आम्रपाली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़ रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।